0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: प्रातःकालीन बेला में हम लेके आ गए बनी कुछ असरकारी और अचूक नुस्खा। आ कार्यक्रम तरुआ पता ही बा, आपन दे आपन देखभाल।

0: यानी आपन दोस्त दीपाली के स्वीकार करी स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। तो दोस्त लोग चली शुरुआत करी हम आज के प्रोग्राम के। आप बताई रुआ स्वास्थ्य का दिन कुछ ही घरेलू नुस्खा। तो सबसे पहले हमने के जानल जाई इस सुहाना मौसम में सुंदर त्वचा खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। दोस्त लोग हमने के संपूर्ण त्वचा रोम छिद्र द्वारा निर्मित होला। त्वचा प्रतिपल ई छिद्र के माध्यम से बाहर के वातावरण के संपर्क में रहेला व ऑक्सीजन विटामिन आदि के पूर्ति करत रहेला। प्रकार के रासायनिक तत्वों की पूर्ति त्वचा द्वारा ही होला, जिसमें प्रमुख विटामिन डी सूर्य द्वारा, ऑक्सीजन हवा द्वारा, मैग्नीशियम मैग्नीस धूलकण द्वारा, लोहा जिंक ब्रोमीन मिट्टी द्वारा। के रासायनिक तत्व जल द्वारा स्त्री व पुरुष के त्वचा में अंतर होला और ये अंतर के कारण हार्मोन के स्त्राव में परिवर्तन होला। हार्मोन द्वारा मेलोनिन के स्त्राव त्वचा के सुंदर व मुलायम बनावे खातिर जिम्मेदार होला। आसान उपाय द्वारा चिकना व सुंदर बनावल जा सकेला। त्वचा खातिर ऑली ऑयल सबसे फायदेमंद तेल है। मालिश करे पर ई तेल सीधे आंतरिक त्वचा में जाके वहाँ उपस्थित तेल ग्रंथि के स्त्राव के बढ़ावेला, फलस्वरूप त्वचा धीरे धीरे मुलायम व स्वस्थ होके लगेला। कच्चा सलाद के ऊपर हल्का ऑलिव ऑयल डाल के मक्खन की तरह इस्तेमाल करे पर सीधे पेट में जाके वहाँ के पीएच वैल्यू के संतुलित करेला और त्वचा के स्वस्थ बनावेला। जब तिल के आग पर पकावल जाला तो उसमें उपस्थित विटामिन ई नष्ट हो जाला। यह विटामिन ई त्वचा में कसाव पैदा करेला, यही से कच्चा ऑली ऑयल अधिक फायदेमंद होला। अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग त्वचा के नुकसान पहुंचा सकेला। संपूर्ण शरीर पर ऑली ऑयल, गंधक नीम, चंदन व नमक से तैयार कैल गई मिट्टी के लेप त्वचा के ऑक्सीजन दर बढ़ा के त्वचा में कसाव पैदा करेला। त्वचा पर मिट्टी के लेप सबसे स्वस्थ व सुंदर उपाय है। हमेशा ताजा व गुनगुना जल से नहाए पर शरीर के 12 प्रकार के रासायनिक तत्व प्राप्त होला। पानी में उपस्थित हानिकारक रासायनिक तत्व के त्वचा स्वयं बाहर कर देवेला या शरीर उसके पसीना के द्वारा बाहर निकाल देला। पहले घर्षण स्नान त्वचा के रोम छिद्र के खोल के उसे सशक्त व मजबूत बनावेला। ताकि स्नान करे पर त्वचा द्वारा पानी अधिक मात्रा में अंदर जा सके। स्नान के बाद तौली से शरीर के पोछे के ना चाहिए, शरीर के पानी ऐसे ही सूखे दी ताकि त्वचा पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी ले सके। आयरन युक्त आहार खून में लौह तत्व की मात्रा बढ़ा के त्वचा के कोमल बनावेला। आहार में फल व कच्चा सब्जी सबसे फायदेमंद है। जैसे चुकंदर, गाजर, लीची, शहद, खीरा, टमाटर, पपीता, अनानास, लौकी इत्यादि। तो दोस्तों अभी तजन्नी हसन हमने के सुंदर त्वचा खातिर कुछ उपाय। तो चलिए अब बता दी कि भोजन में पौष्टिकता कैसे बढ़ा सकता नी। के खान पान के लेके का कुछ नहीं खीसन करत, लेकिन वास्तव में जरूरत ई बात के अधिक होला कि हम जौन कुछ प्रतिदिन सेवन कर रहल बानी ओके पौष्टिकता बढ़ावे के जतन करी। तो चलिए हम कुछ ऐसा रोचक तत्व बतावे जात बानी जौन हमनी के भोजन के पौष्टिकता और स्वाद दोनों के बढ़ा सकेला। सुंदरता दोनों खातिर ये जानकारी बहुत उपयोगी बा। दोस्तों कारोवे जानता नहीं कि खाए पिए के चीज में शुगर के कितना मात्रा होके के चाहिए। रवा ये जान ली कि 200 मिलीलीटर कोला में लगभग 22 ग्राम शक्कर होला, जबकि इतना ही चॉकलेट सोया मिल्क में 10 ग्राम शक्कर होला। मार्केट में मौजूद स्पोर्ट्स ड्रिंक के 200 मिलीलीटर कप में 21 ग्राम शक्कर होला। इंस्टेंट शुगर से मीठी चाय के 200 मिलीलीटर मात्रा में 21 ग्राम शक्कर होला। अलसी में घुलनशील और अघुलनशील दो तरह के फाइबर होला। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होला। एके खाए में कई तरह से प्रयोग कई जाला। ई फल के स्मूदी में मिक्स करके पी या पाकल होकर सब्जी में डाल के बनाई। आटा में मिला के एके रोटी भी बना सकता नी। शहर के अच्छा अच्छा स्टोर्स में सोया मिल्क आसानी से मिल जाला। ई फ्लेवर वाला और ई बिना फ्लेवर वाला के भी मिलेला। एक ग्लास सोया मिल्क में प्रोटीन के मात्रा लगभग उतना ही होला जितना कि एक ग्लास गाय के दूध में होला। मिलीलीटर सोया मिल्क में 80 कैलोरी और लगभग 6.6 ग्राम प्रोटीन होला। खाना कुक करते समय कुछ बात की ख्याल रखी। मीट के धीमा धीमा और कम आंच पर पकाई। कोशिश करी कि स्टीम करके पकाए जाए वाला चीज के फ्राई ना करी। डाइट संबंधी ऐसा टिप्स रवा के जवा रखे में मददगार हुई। ब्रेकफास्ट में साबुत अनाज के जरूर शामिल करी। इमे पॉलीफिनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होला। पॉपकॉर्न के ई मामला में काफी स्मार्ट मानल जाला। में दूसरा प्रोस्टेड स्नैक्स जैसे चिप्स के तुलना में 5 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट पावल जाला। महिला लो अक्सर घर के कामकाज में अपन सुबह के नाश्ता भूल जाला लो, लेकिन ऐसन कहल ठीक नहीं के। जे लोग सुबह के नाश्ता ना करे के रूटीन बना ले बा ओ लोग में टाइप 2 डायबिटीज के आशंका अधिक हो जाला। तो ऐसे अपना दिनचर्या में सुबह के नाश्ता जरूर शामिल करें। तो दोस्त लोग अब घड़ी के सुई कर रहल बा इशारा कि हम ली रउआ से जाए के आज्ञा। ई वादा के साथ कि फिर होई हमार भेंट काल कुछ दूसर नुस्खा के साथ। तब तक रखी रउआ अपन सेहत के ख्याल आ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
1: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: मैंने आपको बताया था कि विदुर के आदेश पर रातों रात वो सुरंग बन गए जिसका मुंह लाख के बने भवन से बाहर निकलता था। पांडव जिस हाल में फंसे थे, मैं स्वयं उसका साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिससे कभी कुछ नहीं छिपा, संसार की एक भी घटना नहीं। अब भीम तो तोड़ फोड़ वाला इंसान था, तो वो भवन की दीवार को तोड़कर बाहर निकलने को उतावला था, जबकि युधिष्ठिर शांति से बच निकलने की बात कर रहे थे। ऐसे में कुंती ने बहुत बुद्धिमानी से अपने बेटों को संभाला।
9: रुको भीम, ये क्या करने जा रहे हो?
10: कुछ नहीं माता, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दीवार बनी किस चीज से।
9: तुम्हारे तात विदुर की सूचना पर तुम्हें विश्वास नहीं है पुत्र?
10: विश्वास है माता, पर मैं अपनी आंखों से कौरवों की नीचता देखना चाहता हूँ।
11: कौरव कितने नीचे गिर चुके हैं ये हमें बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है भीम, पर इस समय क्रोध या प्रतिशोध की बात सोचना भी हमारी मूर्खता होगी।
9: पुत्र युधिष्ठिर, भीम ऐसी कोई भूल नहीं करेगा।
12: हम तो बोलेंगे गुरुचन महाराज की जय बोलेंगे।
13: आप बहुत अच्छे हैं महाराज, आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा।
12: आपने पूछा, केवल आपने पूछा। आपकी जय हो महाराज, जय हो।
14: सुन रहे हैं आप लोग, पुरोचन ने ढेर सारे लोगों को बुलाया है।
15: वो हमारी मृत्यु का उत्सव मना रहा है। देखा माता, उसने भवन का द्वार भी बंद कर दिया है जिससे यही हमारी चिता बन जाए।
14: सहदेव, इसका अर्थ है कि वो आज की रात ही आग लगाएगा।
9: हमें इसी समय यहाँ से निकल जाना चाहिए।
10: आप सबको जाना है तो जाइए, मैं यहाँ से ऐसे कायरों की तरह मुंह छुपाकर नहीं जाऊंगा।
9: नहीं भीम, तुम भी हमारे साथ निकलोगे।
13: आज से पहले कभी ऐसी न रात आई थी, ऐसा उत्सव हुआ था
2: और न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि ये उत्सव हस्तिनापुर के युवराज के सम्मान में हो रहा है। पियो पियो पियो और पियो, जी भर के पियो। कुछ घड़ी बाद इधर मैंने आग लगाई और उधर ये भवन पांडवों के साथ स्वाहा।
14: और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मामा, अब तक कोई दूत आया क्यों नहीं?
16: शांत भांजे शांत, ऐसी उतावली करोगे तो मुख जल जाएगा। षड्यंत्र का फल बहुत गर्म होता है, उसको फूक फूक कर खाना सीखो।
12: ईश्वर,
17: महारानी, महारानी, आप नींद से ऐसे क्यों जाग गई?
12: मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा महाराज। मैंने देखा कि पूरे हस्तिनापुर में आग लगी हुई है, सब चीखते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, किसी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा।
17: शुभ शुभ बोलिए महारानी गांधारी, हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा।
12: मैं कह रही हूँ कि सारे हस्तिनापुर में आग लगी हुई है और आप सिर्फ अपने पुत्रों की बात कर रहे हैं।
17: दुर्योधन, पुत्र कहाँ हो? पुत्र तुम ठीक तो हो ना? पुत्र,
12: अरे क्या क्या कर रहे हैं आप?
18: क्या क्या हुआ महाराज?
17: दुर्योधन कहाँ है? उसे मेरे पास बुलाओ, वो ठीक तो है ना?
12: मैं तो स्वप्न की बात कर रही हूँ महाराज, और आप भागने दौड़ने लगे। जाओ दासी, जाओ यहाँ से।
17: स्वप्न कभी कभी सच भी हो जाते हैं देवी गांधारी, बल्कि भोर के स्वप्न अक्सर सच होते हैं। हे ईश्वर, अब कौन सा संकट आने को है?
9: भीम, तुम ये मशाल क्यों लेकर आए हो? हमारे साथ चलते क्यों नहीं?
10: आप जाइए माँ, आप सब सुरंग में प्रवेश कीजिए, मैं कुछ देर बाद आऊंगा।
19: कहाँ है माँ? जल्दी आइए।
10: देखिए माता, भैया आपको बुला रहे हैं, अब जाइए। मैं स्वयं आग लगा देता हूँ इस भवन को। अचानक लगी आग से नशे में डूबे षड्यंत्रकारी भी भस्म हो जाएंगे।
9: भीम, अब चलो, भागो जल्दी।
10: चलिए। मैं आपको उठा लेता हूँ माँ।
9: नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ।
10: तुम थक जाओगी माँ, अब हट मत करो माँ, आओ।
9: अरे अरे भीम, क्या कर रहे हो? पुत्र, मैं गिर जाऊंगी।
10: ना मैं गिरूंगा और ना आपको गिरने दूंगा। सहदेव, अब सुरंग चौड़ी हो गई, चाहो तो तुम मेरे दूसरे कंधे पे आ जाओ।
20: नहीं भैया, तुम बस माता को ही संभालो।
14: अब अंधेरा कुछ कम होने लगा है, लगता है सुरंग का द्वार पास ही है।
21: उठो भांजे, उठो, अब सोने का समय कहाँ है?
14: अरे नींद कहाँ आई मामा, पूरी रात दूत की प्रतीक्षा में शैया पर उलटता पलटता रहा।
21: वाह भांजे, अच्छा अच्छा है, अच्छा है। रात भर जागने से तुम्हारा जो मुख है ना, सूज गया है। पांडवों की शोक सभा में ऐसा मुख अच्छा लगेगा सूजा हुआ। हाँ, तुमने युवराज वाला मुकुट तो पहनकर देख लिया है ना? तुम्हारे इस विशाल सर पर ठीक से बैठ तो रहा है ना?
14: मुकुट की चिंता छोड़ो मामा, पहले ये पता करो कि पांडव यमलोक पहुंचे भी या नहीं।
20: धुए की क्या बात कर रहे हो महामंत्री जी? अग्नि की ऐसी प्रचंड लपटे उठ रही थी कि वहाँ पूरा वर्णावत इकट्ठा हो गया था।
14: वो पुरोचन मिला या नहीं?
20: लोग उसे ही ढूंढ रहे थे। शायद लोगों को संदेह हो गया था कि ये सब उसी का किया धरा है, पर वो कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि वो भी उसी अग्नि में भेंट चढ़ गया।
0: ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने बचाव के लिए कुछ तो व्यवस्था की होगी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि किसी ने वो सुरंग देख ली तो
20: उसे तो मैंने पांडवों के निकलते ही पूरी तरह पाट दिया है। किसी को कोई संदेह तक नहीं होगा, किंतु महामंत्री एक कक्ष में
0: क्या था कक्ष में?
20: महामंत्री, छह जले हुए शव मिले हैं। मुझे कुछ आशंका हो रही है कि कहीं।
4: नहीं नहीं, पांडु कुमारों के जलने की कोई आशंका नहीं है महामंत्री जी।
0: नाविक, तुमने उन्हें नदी पार तो करा दी थी ना?
4: हाँ महामंत्री जी, मैंने स्वयं उन्हें नदी पार कराई थी, इसलिए तो कहा कि संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। पांडव पूरी तरह सुरक्षित है।
0: तुमने कहाँ छोड़ा था उन्हें?
4: मैं उन्हें हिडिम्बन में छोड़कर आया हूँ।
0: पर फिर वो जले हुए शव किसके हैं?
4: वो पांडवों के तो नहीं है महामंत्री जी, क्योंकि उन्हें नदी पार कराने के बाद मैं माता कुंती के चरण छूकर लौटा हूँ।
0: ठीक है, तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ।
4: जो आज्ञा महामंत्री जी।
0: और सुनो, हस्तिनापुर के सीमा के पार निकल जाना, जैसे तुम यहाँ कभी थे ही नहीं।
9: भीम पुत्र, बस करो, कंधे से उतारो अब हमें। अब इतनी भी नहीं थकी हूँ कि।
22: तो क्या आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ? माँ, मैं आपको उठाकर महीने भर भी चलता रहूं तो भी मुझे कुछ नहीं होगा।
9: हाँ पुत्र भीम, पर
11: हमें तेज भी चलना है माँ। हस्तिनापुर से इतनी दूर निकल जाना होगा जहाँ हमें कोई पहचान न सके।
14: यहाँ तो जहाँ तक दृष्टि जाती है बस वन ही वन है।
23: किसी ऋषि महर्षि का आश्रम भी नहीं है कि जहाँ जा सके।
14: भैया, सबसे पहले हमें ये राजसी वस्त्रों को फेंक देना चाहिए। इन वस्त्रों में हमें कोई भी पहचान सकता है।
23: बिल्कुल सही बात कही भैया, इसलिए मैंने उस भवन से निकलते हुए कुछ साधारण वस्त्र रख लिए थे। ये देखिए, इन्हें पहनने के बाद हमें कोई पहचानेगा भी नहीं।
11: अरे वाह, देखा माँ, और आप कहती हैं सहदेव अभी छोटा है, इसने तो वो काम किया है जो हमारी बुद्धि में भी नहीं आया।
9: ये नकुल और सहदेव भले ही संसार में सबसे बुद्धिमान क्यों ना हो, पर रहेंगे तो सबसे छोटे ही ना। मेरे प्यारे पुत्र,
24: वारणावत में क्या हुआ महाराज?
25: अधर्म हुआ है, अधर्म।
24: हमारे महाराज अपराधी है,
25: अपराधी है, अपराधी है।
24: हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे,
25: नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
26: इस जन समूह में कोई है ऐसा जो इस आक्रोश का कारण बता सके? कोई ऐसा जो ये बता सके कि महाराज ने कौन सा अधर्म किया है, कैसा अपराध किया है महाराज धृतराष्ट्र ने?
27: पांडवों की अकाल मृत्यु नहीं हुई है पितामह, वध हुआ है उनका, वध हुआ है।
14: अब यहाँ पांडवों की मौत की खबर से प्रजा में शोक की लहर दौड़ गई, पर भीष्म को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि सबके पीछे दुर्योधन का शैतानी दिमाग है, क्योंकि ऐसा षड्यंत्र पहली बार नहीं हुआ था। पर सच्चाई केवल विदुर को पता थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि पांडवों का भला इसी में है कि अभी वो कुछ समय तक चुप रहे, मतलब वनवास से पहले एक और वनवास। सुनते रहिए महाभारत।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद कर

0: होती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले की 41 पंचायतों को किया गया टीवी मुक्त और पुलिस अधीक्षक के नाम फर्जी आईडी बनाने वाला गिरफ्तार। सड़क हादसे में शिक्षा विभाग के हेड क्लर्क की हो गई मौत और नदी में डूबने से 2 किशोरों की भी हुई मौत। एक युवक ने खुद को ये अपहरण की रची साजिश, पुलिस ने किया नाकाम। और नदी के जलस्तर घटने के साथ ही निचले इलाकों में अब घरों से उतरने लगा है पानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। टीबी मुक्त पंचायत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जिले को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि जिले की 41 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इस उपलब्धि के बाद अब टीबी उन्मूलन अभियान को जन भागीदारी के जरिए और व्यापक बनाने की तैयारी शुरू की गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर टीमों की शुरुआत होगी। ये टीमें प्रखंड और वार्ड स्तर पर जाकर टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करेगी, समुदाय से संवाद स्थापित करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहयोग करेंगी। गोपालगंज में टीबी मुक्त घोषित पंचायतों की संख्या अगर प्रखंड वार देखा जाए तो बैकुंठपुर में 7, बरौली में 1, सदर में 2, कटिया की 4, कुचायकोट की 8, माझा की 2, पंचदेवरी की 1, फुलवरिया की 4, सिधवलिया की 7 और थामे की 4 तथा उचका गाँव के भी पंचायत शामिल है। सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नाम से फर्जी आईडी बनाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस अधीक्षक के नाम पर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनी है और इसके माध्यम से धोखाधड़ी का प्रयास हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में जांच के लिए टीम बनाई। जांच के दौरान इस आईडी को सोनू कश्यप नाम के एक व्यक्ति चला रहा था, जिसके बाद फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई तो इस मामले में साइबर थाने में एक कांड दर्ज करते हुए पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आईडी संचालित करने वाले व्यक्ति सोनू कश्यप, पिता हरिश्चंद्र, जाकिन कस्बा कोयरी, थाना सादियाबाद, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। सोनू कश्यप को विधिवत गिरफ्तार कर पूछताछ करते हुए अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर किसी व्यक्ति के नाम, फोटो अथवा व्यक्तिगत विवरण इत्यादि का दुरुपयोग करने वालों को कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा दिलाने का काम करेगी। पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक गतिविधि करने वालों के विरुद्ध लगातार तकनीकी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। जनता से अपील की गई है कि ऐसे किसी फर्जी अकाउंट अथवा संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल साइबर थाना अथवा स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें। नगर थाना क्षेत्र के फतहा गांव के पास NH531 पर रविवार की देर शाम 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के रहने वाले राहुल कुमार सिंह, उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। ये शिक्षा विभाग में हेड क्लर्क के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे और सेमरा हाई स्कूल में पदस्थापित थे। जानकारी के अनुसार राहुल कुमार सिंह रविवार की शाम बाइक से फतहा गांव के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें राहुल कुमार सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही बाइक घटना के बाद से लापता हो गई है। पुलिस ने इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया और घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। इधर दाहा नदी में नहाने के दौरान 2 किशोर की डूबने से मौत हो गई है। यह घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के बरई पट्टी गांव के पास की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान बरई पट्टी गांव निवासी प्रमोद शाह के पुत्र आदित्य कुमार उम्र 13 वर्ष और महंत शाह के पुत्र सागर कुमार उम्र 12 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों किशोर गांव के पास बहने वाली दाहा नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चे पानी में तेज बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके और धीरे धीरे गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते दोनों नदी में डूब गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। जब तक इस घटना का लोगों को एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। हादसे की खबर जैसे ही गांव में फैली तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। बदहवास परिजन स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल पर दौड़े। किसी तरह दोनों के शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही मृतक के परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। एक युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि 24 घंटों के अंदर पुलिस ने युवक को छपरा जंक्शन से सकुशल बरामद किया। तकनीकी शाखा की मदद से पुलिस ने युवक को बरामद किया तो पूरा मामला उजागर हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। मामला बरौली थाना क्षेत्र के पेट बिरैचा गाँव का है, जहाँ लापता आकाश कुमार जो नंद कुमार मांझी का 20 वर्षीय पुत्र है, पहले इसके अपहरण की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आकाश कुमार को छपरा जंक्शन से जब बरामद किया तो पता चला इसने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची और फिरौती भी मांगी। अब इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गंडक नदी का जलस्तर अब काफी तेजी से नीचे आ रहा है। खतरे के निशान से गंडक नदी का जलस्तर अब जल्द ही नीचे आ जाएगा और पानी घटने से निचले इलाकों में भी जलस्तर में कमी हो रही है, जिससे लोगों को अब राहत मिलने की संभावना है। हालांकि बैकुंठपुर के गंभारी, शीतलपुर, खोरमपुर समेत 4 पंचायतों में अभी भी पानी फैला है। जिलाधिकारी ने जल्द ही स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई है। बाढ़ को लेकर आज जिला पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
4: जैसा आप लोगों को पता है कि बहुत अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति इस बार आई थी। जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे भी 28 सेंटीमीटर ज्यादा पानी आया है और इसके कारण हमारे जो 6 प्रखंड है उसमें तकरीबन 78 वार्ड प्रभावित हो गए। मोर देन 25,000 जनसंख्या भी प्रभावित हुई है। उन्होंने लगातार जो है लोगों को निष्क्रमित किया है। मोर देन 10,000 लोग अभी भी निष्क्रमित होकर के बांध पर हैं और विभिन्न राहत शिविरों पर हैं। हम लोगों ने फिर कम्युनिटी किचन्स भी चलाए थे, 44 कम्युनिटी किचन्स थे और मोर देन 50 जो हमारे नाव हैं लगातार चल रहे थे लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने के लिए। इसके अलावा जो है हम लोग लगातार मेडिकल कैंप्स इत्यादि लगा रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि अभी भी पानी डेंजर लेवल के ऊपर ही है। वैसे पानी काफ़ी घट गया है लेकिन लोगों को एहतियातन तौर पर बताया जा रहा है कि अभी भी नज़दीक नहीं जाएं और उम्मीद है कि कल सुबह तक यह पानी डेंजर जोन से नीचे चला आएगा तो फिर जो स्थिति सामान्य हो जाएगी। अभी कल एक कैजुअलिटी यहाँ हुई थी लेकिन वो पोखर में हुई थी। जो पानी बढ़ा था बाद में जो पोखर और भिंड वाले जो क्षेत्र है उसमें पानी जल भरा हुआ था, उसमें एक बच्चे के डूबने की सूचना है।
3: बिहार सरकार के निर्देशानुसार टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने और टीबी मरीजों के उपचार के साथ साथ पोषण संबंधित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज गोपालगंज क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की उपस्थिति में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इसका आयोजन जिला टीबी केंद्र सदर अस्पताल गोपालगंज के द्वारा किया गया था। पोषण किट का वितरण चेंबर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से टीबी मरीजों को उपचार के साथ पर्याप्त एवं पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही नियमित दवा लेने और चिकित्सकीय परामर्श का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान 50 टीबी मरीजों को पोषण की पोटली दी गई। भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली ओपी के लाला छापर बाजार के दीपक ज्वेलर्स में हथियारबंद अपराधियों द्वारा लूट की घटना जो कारित की गई थी, इस मामले में आज भी पुलिस ने एक विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लिया है और उससे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इस मामले में संलिप्त 7 अभियुक्तों को पूर्व में भी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक कार से 634 लीटर देशी शराब बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के बसडीला बाजार के पास पक्की सड़क पर आरोपी को पकड़ा है। इसके गाड़ी से मिली शराब और गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अरमान शाह देवापुर पुरदी टोला थाना माझागढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। बैकुंठपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान कथा वाचिका ममता पाठक ने श्रद्धालुओं को कथा सुनाना शुरू कर दिया है। जदयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी इस कथा में पहुंचे थे। उन्होंने कथा वाचिका को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया और सांसद ने आरती में शामिल होकर कथा का श्रवण भी किया। जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 2 गोपालगंज में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोपालगंज के विधायक और जिला अध्यक्ष के साथ कई सारे गणमान्य लोग शामिल हुए। इसमें भारत स्काउट गाइड की जिला इकाई के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो काफी सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में जिन जिन विद्यालय से आए हुए छात्र छात्रा पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिए थे, मार्च पास्ट के द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत करते हुए बेहतर पेंटिंग करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। गोपालगंज पुलिस के द्वारा प्रत्येक दिन रात्रि में बस सेवा का संचालन किया जा रहा है, जो लगातार अभी जारी है। यह बस सेवा हथुआ थामे गोपालगंज रेलवे स्टेशन तथा गोपालगंज बस स्टैंड से शुरू की गई है। उक्त जगहों से देर रात आने वाले यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुलिस की यह बस सेवा काफी प्रभावशाली बताई जा रही है। पूरे जिले में दुर्गा पूजा को लेकर धाम से तैयारी चल रही है। जगह जगह पंडाल इत्यादि के निर्माण हो रहे हैं और अभी से ही उत्सव का माहौल बनने लगा है। बताया जा रहा है कि जिले के तमाम क्षेत्रों में माता की प्रतिमा को भव्य तरीके से बनाने में लगातार कारीगर काम कर रहे हैं। दिघवा दुबौली बाजार, रेवती थकाम, हरदिया चौक, बरौली, गोपालगंज, मीरगंज, हथुआ, भोरे, कटिया सहित तमाम जिले के बड़े बाजारों में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला बाजार में धूमधाम से महावीरी अखाड़ा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान रविवार की देर रात जुलूस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के सभी गांव और टोलों में जुलूस का आयोजन हुआ। इस दौरान पारंपरिक तरीके से उत्साहपूर्ण माहौल में लोगों ने हनुमान जी की पूजा आराधना भी की और जुलूस का आनंद भी लिया। आज सोमवार को भव्य झंडा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए लोग झंडा कार्यक्रम में शामिल होकर बसडीला में महावीरी अखाड़ा का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले की 41 पंचायतों को किया गया टीवी मुक्त और पुलिस अधीक्षक के नाम फर्जी आईडी बनाने वाला गिरफ्तार। सड़क हादसे में शिक्षा विभाग के हेड क्लर्क की हो गई मौत और नदी में डूबने से 2 किशोरों की भी हुई मौत। एक युवक ने खुद के अपहरण की रची साजिश, पुलिस ने किया नाकाम। और नदी के जलस्तर घटने के साथ ही निचले इलाकों में अब घरों से उतरने लगा है पानी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
8: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया।
1: हाँ बेटा डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं? 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
5: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
6: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है।

0: 9999।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक

0: आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर।
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियथ क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर मुख्य अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
4: विजयम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजयम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
0: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल विजयम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
5: इन माय ओपिनियन विजयम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंट्रम or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
4: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजयम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने यह बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
8: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 3586 या 95 999 27 982।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
10: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया।

0: आँख की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
4: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
5: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 AM पर।

सुनवाई करेगा। बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मिले दो राष्ट्रीय सम्मान। और गंडक, कोसी, बागमती समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ की स्थिति में सुधार, गंगा नदी पटना और भागलपुर में अब भी लाल निशान के ऊपर। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। आज कई प्रमुख उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की संभावना है। इससे पूर्व कल पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव ने पर्चा भरा। वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के पुष्कर आनंद, दरभंगा शिक्षक सीट से घनश्याम राय और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा ने नामांकन पत्र भरा। भाजपा के सर्वेश कुमार ने दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के डॉक्टर संजय यादव ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, असदुल्ला खान ने पटना स्नातक और डॉक्टर मदन मोहन झा ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। राजद से जयराम यादव ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि जनसुराज के रजनीश रंजन ने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है। इधर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राम पुकार सिन्हा ने पार्टी लाइन से अलग जाकर नामांकन पत्र भरा है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को की जाएगी। 9 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC प्रदेश में मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए कल और परसों शिविर का आयोजन करेगा। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होने वाले शिविर में लगभग 70 मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें मध्याह्न भोजन खाकर बच्चों के बीमार होने, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मामले शामिल हैं। NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम और सदस्य न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी और न्यायमूर्ति विजया भारती सयानी की पूर्ण पीठ मामलों की सुनवाई करेगी। मामलों की सुनवाई के बाद आयोग विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद भी करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2016 में भी यह शिविर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में इको टूरिज्म स्थलों को निजी जन भागीदारी PPP मोड पर विकसित किया जाएगा। पटना में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर इको टूरिज्म के विकास के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि खरीद या अधिग्रहण कर PPP मोड में योजनाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में इको टूरिज्म के विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ सामग्री का उपयोग करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ओढ़नी, खड़गपुर, ताराकोल और जालकुंड बांध सहित अन्य जलाशयों के आसपास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय सम्मान दिए गए हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया।

0: में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले सबसे अधिक प्रतिशत आवास स्वीकृत करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है।
1: With the highest percentage of houses sanctioned against the target so far among large states in PMAYU 2.0, and the award goes to Bihar.
0: इन उपलब्धियों से राज्य में सबके लिए आवास के लक्ष्य को नई गति मिली है। सरकार का प्रयास है कि पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में धान की सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। धान खरीद की यह प्रक्रिया अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगी। ए ग्रेड धान के लिए किसानों को 2,461 रुपए और सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। दोनों श्रेणियों के समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सहकारिता विभाग ने पैक्स और व्यापार मंडलों को जूट के बोरे तथा भंडारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी खरीद के लिए किसानों का कृषि पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने केंद्र से धान खरीद का लक्ष्य 35 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन करने का अनुरोध किया है। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी प्रीता वर्मा पुलिस महानिदेशक पद पर अगले आदेश तक बनी रहेंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि 15 सितंबर को अधिसूचना जारी कर प्रीता वर्मा को 5 अक्टूबर तक राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्रीमती वर्मा 1991 बैच की अधिकारी हैं। वे वर्तमान में गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक सह महासमादेष्टा का पद भी संभाल रही हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं।

0: सभ्यतागत चेतना का पुनर्जागरण पर एक रिपोर्ट।
1: भगवान राम की जन्मस्थली राम मंदिर पर विवाद अदालत में लगभग 70 वर्षों तक लंबित रहा। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण विवाद को बढ़ाने के बजाय फैसले के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का था। सभी पक्षों से लगातार अपील की गई कि वे न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करें, शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के

0: से स्वीकार करने के लिए देशवासियों के प्रति आभार प्रकट किया।
1: राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित कर पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया।
0: बिहार में भी आम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया।
2: अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो काफी दर्शनीय और मनोहारी है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु के रूप में पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। इसी तर्ज पर भगवती सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में आकर्षक माता सीता की मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इससे जिले को धार्मिक पहचान मिलेगी, वहीं पर्यटन स्थल के रूप में जिला विकसित होगा। मंदिर निर्माण कार्य को कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहम योगदान है और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद भी देते हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी सीता मंदिर बनवाने के लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं।
0: 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ। नवंबर 2025 में ध्वजारोहण के साथ मंदिर का निर्माण पूर्ण संरचनात्मक रूप से पूरा हुआ। 500 वर्षों के बाद अयोध्या की पवित्र भूमि में उस सभ्यतागत आस्था को उसका प्रतीक्षित धाम मिला। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
3: प्रदेश में गंगा, गंडक और कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि गंगा नदी कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर लाल निशान से 54 सेंटीमीटर और हाथीदह में 69 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। भागलपुर के कहलगांव में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, यहां नदी खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के 30 प्रखंडों की लगभग 10 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 28 टीमों की तैनाती की गई है। राज्य के विभिन्न भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी पटना समेत अधिकतर भागों में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
4: दिनांक 6 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
3: आज बिहार की रणजी टीम का चयन किया जाएगा। इसके लिए पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में चयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, गणेश कुमार के निलंबन से अदालत का इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। प्रभात खबर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के हवाले से लिखता है, जदयू में बने रहेंगे अनंत, नीरज के खिलाफ बयान नहीं देंगे पर उन्हें जिताने का प्रयास भी नहीं करेंगे। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, गांवों में कर वसूली नियमावली में होगा संशोधन, घरों पर नहीं लगेगा संपत्ति कर। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार में 25 जनवरी से दूसरे चरण की जनगणना, 35 दिन तक चलेगा महाअभियान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल से पटना में 2 दिवसीय शिविर लगाकर मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों की सुनवाई करेगा। बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मिले 2 राष्ट्रीय सम्मान।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 90765665750।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up.
15: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हां, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
16: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM का।
17: जी मैम,
16: आप सरफरोज जी बोल रहे हैं ना?
17: जी मैम।
16: जी देखिए, अब आपको पहचान गया ना, नाम बताना नहीं पड़ता आपको।
17: जी मैम, बहुत खुशी है और यही बोलना चाहेंगे कि मतलब आपको तो समझना चाहिए, मतलब कि अगर रिंग होकर कट जाए तो कैसा लगता है आदमी को।
16: जी,
17: आज हमारी भारती मैम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या?
16: आपकी भारती मैम भी रिकॉर्ड करेंगी इसके बाद।
17: अच्छा, 12 बजे से?
16: जी जी। तो और बताइए, आप ठीक ठाक है ना?
17: जी मैम, हम ठीक है, लेकिन एक घंटे से 11 बज के 2 मिनट से ही लगा रहे हैं, निकलो बिजी बिजी।
16: अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं, आप तो लग गया, बता दीजिए फरमाइश अपनी।
17: जी फरमाइश, आरजू मूवी से गाना सुनाइए।
16: कौन सा?
17: जी गाने का बोल है, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है ऐसा ही। और मैं उस दिन तो आपको रानी जी बहुत मतलब अच्छा बात बता रही थी, सुने? हाँ तो हम सुने बहुत ज्यादा, मतलब देर तक बात हुआ लेकिन अच्छा हुआ, आपको अच्छा बता रही थी। लेकिन एक बात है उनको हम बता दें, अभी सुन रही होंगी तो सुन लेंगी, कि जो पुराने लोग हैं आपके मतलब पुराने दोस्त रेडियो का, वो तो समझते हैं लेकिन जो नए हैं वो समझ नहीं पाते हैं। और आप लोग आरजे हैं तो आपको सब देखकर चलना पड़ेगा ना, वो तो बात अच्छा बोल रही थी, मतलब जी मैम तो यही बात बोलना चाहेंगे। और आपको तो हम यही बोलेंगे, आपको कभी टाइम अगर मिले तो एक बार आप भी कॉल करके देखिए, इस शो का कुछ अलग ही मजा है। जी मैम प्ले कीजिएगा या नहीं, लेकिन एक बार करके देखिए कॉल, और भारती मैम रिकॉर्ड करेंगी।
16: जी जी हम समझ रहे हैं कि आप किस बातों को।
17: नहीं मैम वो बजे ना बजे अलग बात है, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस शो में, इसलिए तो हम इतना कोशिश करके इस शो में लगाते हैं।
16: जी जी चलिए जब आप बोल रहे हैं तो मैं भी करूंगी।
17: जी मैम 300 से ऊपर हो गया मेरा आज, समझिए मेरा हाथ दुख गया है, मतलब दर्द कर रहा है।
16: इतनी मेहनत करनी पड़ जा रही है
17: बहुत ज्यादा। और एक लड़का से भी बोले कि तुम लगाओ भाई मेरे फोन से, लग जाए मेरा हाथ तो दुख गया था, तो समझिए आपके शो में जुड़ने के लिए हम क्या क्या किए।
16: चलिए तो मुझे भी फल बनता है कि आपके गाने को जल्द से जल्द प्ले करें।
17: देखिए मैम चलते चलते यही बोलेंगे कि आपके पास अभी तो 2 दिन का समय है, मतलब बना सकती हैं कॉल को।
16: जी जी बिल्कुल,
17: और हमारे बातों को कुछ गलत लगा हो उसके लिए दिल से सॉरी।
16: नहीं नहीं कोई बात आपका गलत नहीं लगा, तो इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
17: ओके मैम बाय।
16: जी बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM ना।
1: हम किस्मत बोलते नहीं
0: दीदी, कैसन बानी?
1: ठीक है बानी।
0: वैसे कहाँ से बोलते हैं? हुआ
1: हाँ, सब ठीक बन घर है। सारा लोग सब ठीक बन घर है।
0: जी जी, सब बढ़िया बा। कहा था नहीं के हुआ, कहाँ से बोला था?
1: सिमरा से था।
0: अच्छा, सब हुआ ठीक बानी नू?
1: हाँ सब ठीक है।
0: चलिए तो फिर कौन सा गाना सुने आज?
1: कव्वाली सुना दिया, घर में झोली है मोहम्मद।
0: अच्छा, और ये गाना के सुनवाई के भी चाहता
1: नहीं? सुना लाखों आदमी से।
0: चलिए तो फिर अब गाना हम प्ले करता नहीं
1: थी
0: जी। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
8: Now pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
8: Pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
10: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello,
11: hello, hello, hello, hello.
12: To dosto break ke baad आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: जी जी नमस्ते मैम।
14: जी नमस्ते,
13: एक गाना सुनना था। हेलो
14: जी, गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
13: पवन जी नाम है।
14: और कहाँ से?
13: पवन जी हथुआ से, गोपाल मंदिर।
14: अच्छा जी, तो पवन जी कैसे हैं आप?
13: ठीक है मैम। भाई ये फोन लगाते लगे 91 बार लगा है आपके पास।
14: हाँ,
13: भगवान से बात करिए चाहे आपसे बात करिए, बराबर है।
14: अच्छा जी, वैसे आप लोग से बात करके मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा
13: जी जी तो, सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है
14: जी जी। तो पवन जी क्या आप हेलो माइचुएस में पहली बार कॉल किए हैं?
13: ना दो बार किए थे आईटी सर का बार हो गया।
14: अच्छा जी, तो हमको लगता है कि शायद मुझसे पहली बार बात हो रही है आपसे।
13: मनोरमा जी बोल रही हैं?
14: हाँ जी।
13: ना अगला बार हुआ था शुक्रवार को।
14: अच्छा जी, तो नोटिस नहीं किए होंगे।
13: जी जी।
14: और बताइए पवन जी, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
13: हर दिल जो प्यार करेगा।
14: जी, गाना तो बहुत ही
13: गाना आप ही के रेडियो इंजन से सुने हैं।
14: अच्छा,
13: हेलो चॉइस से। हाँ, तो कहे कि ना इसको कलम पर लिख लेते हैं, याद रहेगा।
14: जी जी, तो पवन जी आप ये मुझे गाना गा के बता सकते हैं?
13: ज्यादा सॉरी है, दो लाइन का अच्छा नहीं लगता है।
14: कोई बात नहीं,
13: याद रहता तब ना।
14: नहीं नहीं, मुझे आपके मुँह से दो लाइन ही सुनना है, कि आप मुझे गा के बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
13: जी जी, हर दिल जो प्यार करेगा इतना ही तो याद है।
14: अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम आप गाना याद करके रखिएगा, हम आपसे गाना सुनेंगे आपके।
13: जी जी, जरूर जरूर
14: जी। तो पवन जी, ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
13: आपको, सबसे पहले आपको।
14: जी थैंक यू।
13: पूरा पूरा जिला गोपालगंज जिला लोगों को जो सुन रहे हैं इस लोगों को भी।
14: ओके पवन जी, तो चलिए इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
13: जी जी
14: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी बारहवीं सुंदरपुर सुंदरी।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपन बताइए।
0: जी हम भी बढ़िया।
1: भक्ति गाना सुना दिए अनु दुबिया के बारे में।
0: कौन सा बता दीजिए?
1: कोई भी।
0: अच्छा कोई भी। और गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
1: ओके
0: बालभी
1: जी,
0: तो चलिए आपके गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 पर।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello. Hello. Hello. Hello.
14: To dosto break ke baad aap सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, नमस्कार
16: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: मैं मास्टर नसार अहमद लखी दरगाह जिले
16: जी। कैसे हैं आप?
15: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
16: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
15: आप मनोरमा जी या भारती जी?
16: जी मैं मनोरमा
15: जी। थैंक यू, बहुत खुशी की बात आपसे आज बात हो रही है। भारती जी से तो बात हो चुकी है मगर आपसे आज बात।
16: अच्छा जी, तो क्या आप रेडियो रिमझिम में पहली बार कॉल किए हैं?
15: नहीं, जब से रेडियो रिमझिम चालू हुआ तब से मैं सुनता हूँ, आज भी सुनता और शिकायत यही है कि मैं जितने बार मैंने फरमाइश किया कोई भी गाना एक बार भी नहीं मेरा। पिछले हफ्ता मैं फोन फरमाइश किया था लता जी का गाना, उससे पहले भी, और एक बार भी ना रिपीट में बजा, सुबह बजा ना शाम।
16: तो जब आप
15: दुश्मनी है क्या?
16: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब आप रिकॉर्डिंग कराए तो बजी होगी कॉल आपका।
15: हम तो सुने नहीं, हो सकता है कहीं, मान लिया कि मैं घर पे ना हूँ इस वजह से कोई बज गया होगा। नहीं मैं, मगर फिर भी रिपीट में मैं 9 बजे से वाला जो प्रोग्राम चलता है वो हमेशा सुनता हूँ। काम वाला कहीं इधर उधर हो गया होगा, 9 बजे वाला तो मैं हमेशा, 9 बजे दिन वाला मैं फ्री रहता हूँ उस टाइम में।
16: जी जी, जब आप रिकॉर्डिंग करा रहे हैं तो गाना तो जरूर बजेगा।
15: नहीं ये भारती जी का जो भी प्रोग्राम हो, हम जो भी फरमाइश दिए हैं भारती जी के नंबर पे रिकॉर्डिंग में हुआ है। आपका पहली बार आज मैं आपसे रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ यही गाना का।
16: चलिए बढ़िया है, तो फिर आगे क्या है आपकी फरमाइश?
15: फरमाइश वही है, वही लता जी का कोई अच्छा और एक गाना सुना दीजिएगा। अब तक बहुत समय लाते जी का हिंदी गाना।
16: जी मैम, जी जी मैं तो सुना ही दूंगी, लेकिन आप इतना मुश्किल से कॉल किए तो आप बताते तो बहुत ही अच्छा होता।
15: वो अब आपसे बात हो रही तो गानों में भूल गए हैं आप। फिर वो गाना जो रिपीट किए, जो गाना हम फरमाइश किए उस गाना को रिपीट करेंगे तो ठीक नहीं होगा।
16: क्यों नहीं होगा? आप
15: नहीं तो सुना दीजिए वही, जब बीजी क्या है नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, चेहरे तो नई बाई चेहरे लगा लेते हैं।
16: जी तो क्या ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे?
15: मैंने आपके तो ये स्टाइल हो गया है, किसी से भी गाना सुन लेती है। ठीक है ओके, मैं आवाज तो ठीक नहीं मगर मैं आपके लिए सुना देता हूँ।
6: जब बीजी क्या नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, नई एक चेहरे पे कई चेहरे

0: रेशमा जी, रेशमा जी हैं जो क्या नाम है पठानपति का, वो बोलती हैं क्या कि हमारा नाम आप लोग प्रचार कर दिया। अरे भाई तो नाम पूछा जाएगा तो प्रचार हो गए करेगा
1: जी जी।
0: तो उनको सुनाना है रेशमा खातून को पठानपति और कुआ के रानी जी को और निशा भारती है उनको और निशा पांडे जी है उन्हें उन सभी और बाकी जितने भी लिसनर सुन रहे हैं रेडियो रिंगिन।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं
0: जी। अगर कोई बात में अगर कोई कुछ कहने में गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो इसी के साथ गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिन 90.4 FM।
0: थैंक यू। ओके
1: वेलकम।

0: सलामुअलैकुम मैम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम
0: जी। हम जाकिर हुसैन जादवपुर गोपालगंज से।
1: जी जाकिर जी कैसे?
0: हम ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: जी मैम, तो मैम गाना वाना सुनना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल बता दीजिए।
0: मैम बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है फोन लगाने के लिए।
1: अच्छा जी।
0: हाँ बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं।
1: चलिए कोई बात ना, लग गया ना कॉल अब।
0: तो मैम गाना सुनना चाहते हैं हमारे जिया के पुकार सजनवा बैरी भैले हमार।
1: जी जी गाना तो बहुत ही अच्छा।
0: जी मैम ये गाना सुनना चाहते हैं, अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: सुफी आलम, मेराज आलम, ईसु पल्ली, जितलेश शर्मा, मुकेश शर्मा, रविंदर शर्मा और हमारे आपको रेडियो जितना होता है परिवार है।
1: तो अभी क्या हो रहा था?
0: बस कुछ नहीं मैम, क्या करेंगे।
1: तो मौसम कैसा है उधर का?
0: जी मैम काफी धूप है, गर्मी हो रहा है।
1: जी जी तो चलिए जाके जी, तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ओके
1: जी, सुनते रहिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070 32042 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
4: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: अस्सलाम वालेकुम।
15: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
16: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
15: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
16: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, इंदरों में बाजी का। मुझे गाना सुनना है बंजारन मूवी का, कब आएगा मेरे बंजारन।
15: अच्छा, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
16: जी, सबसे पहले आपको मासूम, कौशर, जुनेद, समरन भाई, अरमान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लक्की भाई, रवीना जी, जीतू जी, हिना जी, जी, गिरिया जी, सरिता जी, अमिता जी, निधि, सलेहा जी, शबनम जी, और सभी को सुनाना चाहता हूँ रेडियो रिंग परिवार से।
15: ओके जी, तो चलिए फिर आप गाना हम प्ले करते हैं।
16: जी थैंक यू
15: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM ना।
1: आपका भी मैम, सलाम अलैकुम, क्या खैरियत है?
0: जी वालेकुम अस्सलाम,
1: ठीक है?
0: जी जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता हो गया?
0: हाँ जी नाश्ता तो हो गया, और आपका हुआ?
1: हाँ मैं पानीपत से बोल रही हूँ।
0: अच्छा जी, और आपका नाम?
1: मेरा नाम जोया है।
0: अच्छा जी, अच्छी लगता है आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
1: हाँ और सब बताइए।
0: जी सब बढ़िया है, आप ठीक हैं?
1: हाँ मैडम, मेरे को गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल बता दीजिए।
1: दिल की अरमा आसमान पे गए, नया गाना जो नहीं हुआ है
0: जी
1: वही सुनना है।
0: तो क्या आप मुझे गा के बताएंगी?
1: हाँ, दिल की अरमा आसमान पे गए, यही वाला सुनना है मैडम।
0: अच्छा, और जोया जी ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगी?
1: हाँ, सबसे पहले आपको और भारती मैम को और जितने सुनने वाले हैं सबको सुनाना चाहती हूँ। प्यारा सा बाबू है उसको भी सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा जी, आपके बाबू कैसे हैं? वो तो ठीक है।
1: हाँ वो ठीक है।
0: अच्छा चलिए बढ़िया।
1: हाँ
0: तो जोया जी चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
1: हाँ
0: चलिए फिर तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: अस्सलाम वालेकुम।
8: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
8: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
9: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, दरों बाद गुलाम। मुझे गाना सुनना है बंजारन मूवी का, कब आएगा मेरे बंजारन।
8: अच्छा, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
9: जी, सबसे पहले आपको मासूम, कौशर, जुनेद, समरन भाई, अरमान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लक्की भाई, रवीना जी, जीतू जी, रीना जी, गिरिया जी, कविता जी, अमिता जी, सुनी जी, सलेहा जी, सबनम जी, और सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
8: ओके जी, तो चलिए फिर आप गाना हम प्ले करते हैं।
9: जी थैंक यू
8: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते,
1: कैसे हैं मैम
0: जी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक हैं।
0: तो क्या हो रहा है?
1: अभी तो कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी,
1: आज जल्दी कॉल लग गया है।
0: जी जी, तो कॉल लग गया तो बता दीजिए अपनी फरमाइश।
1: मैम तो देशभक्ति गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, कोई भी?
1: नहीं, हम बता रहे हैं
0: जी। बिल्कुल बताइए।
1: देश न चल, देश न चल।
0: कौन सा?
1: देश न चल, देश न चल, देश मांगता है कुर्बानी।
0: क्या ये गा के मुझे बताएंगी?
1: याद नहीं है।
0: चलिए कोई बात नहीं है। वैसे आप अपना नाम बता
1: दो। नहीं याद
0: है। अच्छा जी, कोई बात नहीं है। वैसे अपना नाम बता दीजिए।
1: मनीषा कुमारी, चरिया सुंदर से।
0: अच्छा मनीषा जी, और ये गाना जो बताएंगे वो किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: जी मैम, आपको, भारती मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी मैम। मैम बुध वाला कब बजेगा?
0: जी आज बजेगा।
1: ठीक है, चलिए सब
0: जी, तो फिर प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम।
1: जी मैम, बाय मैम।
0: Bye.

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: Now pick your phone up.
9: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी,
10: हेलो
11: रेडी रिंकी मैम
10: जी, नमस्ते प्रणाम और राधे राधे
11: जी। नमस्ते प्रणाम, राधे राधे, अभी रुआ की याद करते रहे हम।
10: अच्छा जी
11: जी, अभी सरस्वती जी से बात होते रहा, रुए बारे में बात होते रहा।
10: अच्छा, सब बात होते रहा।
11: ये बासतल्ला की रानी जी बहुत ही अच्छा बात करे, नहीं बहुत कुछ सिखावे नहीं हमनी के।
12: गजब बात कही नहीं
11: जी।
12: और बताई रवा कैसन वानी
11: जी? हम तो बिल्कुल बढ़िया।
12: और बताई नाश्ता वास्ता कर ले वानी?
11: जी जी नाश्ता हो गई बार। और भैया की ना?
12: और ना हम अभी जस्ट पूजा करके अभी जस्ट जस्ट चले और इन्हे की और बात अब हुई होने तो बातें ना हुई दशहरा ले काफी देर दीजिए चले ला और सोचनी अगर पता ना उन्हें टाइम मिली की ना मिली। इन्हें मिलल बता टाइम के मौका खाली ना जाए कहीं रो के याद कर ले सही ना क्या सही?
11: जी जी बिल्कुल। और तो बात करके इतना खुश रहे ना कि हम का ही बताए, मतलब रोज बात करके बहुत ही अच्छा लगे रहा।
12: और हमके पता नहीं कि रहुआ हमके का कहिए बनी, हम सोचे नहीं कि हम कसने सिखाते नहीं एक रिलेटिव राउर जोन में है ना तो और जोन राउर विचार और जितना राउर तरीका और कोशिश रहता ना हमके चाहता कि हमके पूरा सपोर्ट होके के चाहिए रहुआ खातिर
11: तो हमारे बनी समझे
12: ऐसा बात नहीं के। और हमने के तो थोड़ी सी जरिया बा और कोशिश करावरे सावरे मेहनत काम करी बस थोड़ा सा सहारा हमने के दे देता नहीं सका।
11: जी जी सहारा थोड़ा ना बहुत देता नहीं लोग कैसे की सोच ला दुनिया भर वालों के दुआ से हम कुछ
12: बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत खुशी होता है कि रवा स्टार्टिंग में रवा शो करता नहीं और लंच के बाद वहाँ गया होता नहीं दोनों आदमी की आवाज सुन के काफी सुकून मिलेला। और पता बा जब रवा नावे नहीं तो वहाँ से वहाँ का पूछाला जब वहाँ का नावे नहीं तो वहाँ से वहाँ का पूछाला काफी अच्छा लगे एक दूसरे के प्यार।
11: जी जी तो रानी जी आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक बा ना?
12: हाँ सब कोई ठीक बा दी रहुआ बताई रहुआ कैसन बानी और हमारा घर दूदू को क्यूट क्यूट भतीजा वालो।
11: अरे वाह
12: दिन भर रहू में टाइम कटत रह रहुआ की सुनते हुआ उनको के खिलावत रहे नी। और पता वादी जब स्टार्टिंग में रहुआ शो करता नहीं काफी अच्छा लगा था और रहुआ स्टार्टिंग में स्टार्ट भी करता नहीं और जन गाना की जो सिलेक्ट करता नहीं स्टार्टिंग में काफी खूबसूरत रहा था और बहुत सुन के अच्छा लगा था। दो गाना सुन ले स्टार्टिंग में दो दिन से स्टार्टिंग के लिए बनी दोनों गाना जबरदस्त रहा बा दिल लगा लिया और दिल दे सनम मूवी से एक सॉन्ग बजे ले रहा है कि अक्सर इस दुनिया में अनजाने से मिलते काफी अच्छा लग रही है। दाल में काला जरूर बा गाना के बारे में रहो पता बा काफी अच्छा लग रहा है सुन के। और पता बा एक तो बात बा दी रो लोग सुनते हुए कोनो भी काम करे के रहे ला तो हमनियों के ना बुझाला हमनियों के काम कर ले तो वो लोग सुनते हुए।
11: जी जी रानी जी तो फरमाइश बता दी टाइम भी।
12: हाँ अब आरती जी कहाँ वानी कभी आजकल हमारा से बात नहीं करत रहुए से बात करता नहीं तो वो के दिल के भीतर वानी
11: भी रिकॉर्डिंग हो।
12: अच्छा तो ये गाना सुना दी गाना बहुत प्यारा हिंदी सॉन्ग सोचे तो नहीं दो लाइन लोगों साथ ही गा दी।
11: जी जी बिल्कुल।

0: तुझसे कहता हूँ। ये गाना सुनने के बाद ही
1: जी, गाना तो बहुत ही अच्छा था और डेडिकेट भी करके था आपने।
0: जी जी, और ये गाना सबसे पहले रहुआ के और हमने की लिस्ट में पहले रहुआ वानी तो रहुआ के और भारती जी के और कुछ रेडियो दोस्त वानी लो आज बिना देरी किए वो का नाम ले लेता नहीं जी। उत्तम सोनी जी वानी, भास्कर जी वानी, वीरेंद्र जी वानी, उमा शंकर जी वानी और परवेश जी वानी और एक बड़हरिया से और बहन तो बोले हैं और बहुत खुशी मिली है वहाँ के पप्पू नावा रानी की तरफ से गाना में वो वानी, सफरज अली जी वानी और शाहजहां जीवानी, हजरत जीवानी और करिश्मा जीवानी और रिश्मा दीवानी और बाकी जितना सुना था नीले सब कोई रानी की तरफ से।
1: जी जी, तो चलिए एक के साथ राहुल गाना हम प्ले करता नहीं।
0: जी जी

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
8: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: नमस्ते दीदी।
11: जी नमस्ते,
10: क्या हाल बा?
11: जी ठीक बा, अपन बताई कैसन बानी?
10: ठीक बानी, हम खाना वाना हो गया?
11: हाँ जी खाना तो हो गया, अपन बताई
10: हमने हो गया की ना सनी?
11: नहीं किसी
10: करिश्मा कुमारी तीसरे नारायण से।
11: अच्छा,
10: भारती दीदी कहाँ बा?
11: भारती दीदी बानी खान करते नहीं।
10: और सब ठीक बा?
11: जी जी सब बढ़िया बा।
10: चले ठीक बा, हमारे गीत सुनने को आते
11: बता दी।
10: गाय की ना गई
11: ना गा के बताइए अच्छा लगे।
3: सास के बाड़ी।

0: जी
1: रवा तो बड़ी अच्छा गावा था नहीं।
0: अच्छा सुनी
1: आई गाना क्यों के सुनाए की बिचारते नहीं।
0: हाँ सबसे पहले रहुआ के भारती दीदी के, सोनी दीदी के, रेशमा जी के, उत्तम सोनी जी के, स्पेशल हमारे भैया के। हाँ हमारे बेटे भी सुनी हन, मनीष भी सुनी हन, जितना श्रोता बने सबके सुनी।
1: चली तब एक के साथ गाना हम प्ले कर देनी।
0: ठीक बाय
1: जी बाय। सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जी 90.4 FM पर।
1: जी मैं प्रदीप सहनी बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: कौन सुन रहा था मैं?
0: जी बता दीजिए।
1: तो आई मिलन की राधा, वो जो नहीं वो इस मन में तोरा, मीरा का मोहन जो सॉन्ग है ना उसका।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
1: परिवार है जितने श्रोता जन है सभी को सुनाना चाहते हैं।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
8: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
9: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
14: तो दोस्तों, दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो जी, नमस्ते मैम।
15: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इमकिन 90.4 एफएम में।
16: जी थैंक यू मैम, एक गाना सुनना था।
15: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
16: मेरा नाम तो हुआ ऋषभ।
15: और कहाँ से बोल रहे हैं ऋषभ जी?
16: हाथुआ से बोल रहे हैं।
15: अच्छा जी, तो क्या आप हेलो माई चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं?
16: नहीं, हम तो कॉल करते रहते हैं। भारती मैम बोल रही हैं?
15: नहीं
16: जी।
15: तो और बताइए, क्या है आज की आपकी फरमाइश?
16: एक गाना है भोजपुरी, सर्वे भवन तू सुखी रहा।
15: कौन सा?
16: सर्वे भवन तू सुखी रहा।
15: कि ये दो लाइन मुझे बता सकते हैं?
16: दूसरा तो बजा दीजिए ना मैम।
15: बता दीजिए।
16: एक हिंदी गाना है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, अक्षय कुमार का।
15: जी जी, तो क्या आप मुझे गा के दो लाइन बताइएगा ये गाना?
16: नहीं मैम, हमको याद नहीं है।
15: चलिए कोई बात नहीं।
16: तो
15: और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
16: जी मैम, एक संजीव है अलीसा फ्लेक्स वाला, उसी को हम सुनाना चाहते हैं।
15: ये वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
16: हम तो हथुआ से बोल रहे हैं, गोपालगंज जिला।
15: अच्छा अच्छा, चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
16: जी मैम थैंक यू।
15: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी।
1: जी नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: जी ठीक बा, अपन बताए।
0: हाँ ठीक बा, सुने नहीं छूटा कितना रहा था निकी।
1: अच्छा
0: और सब बताए, खाना ना हो गई?
1: हाँ हाँ खाना तो हो गई, राउर भैल की ना।
0: हाँ हमारा तो हो गई भाई, दिल हाली हो गई नहीं मेरा भी।
1: चलो ठीक है, अच्छा बात बा,
0: जरा खा ले लेने में काम होना की कह दे।
1: तो और बताए करिश्मा जी कैसे बानी?
0: करिश्मा जी ठीक बानी, फोन लगाओ तो नहीं हम बात करे खाई खोज करी बताए गलत बात बा की
1: ना। खानो बात नहीं के वहाँ से भी बात हो जाए।
0: मैं बताए फोन लगाओ तो नहीं हम हमारी बेचैन तरीके हम।
1: अच्छा इतना बात करे खातिर? अच्छा जी, वैसे तो बता दी कि राउर आवाज भी बहुत ही प्यारा बा, लेकिन
0: राउर आवाज एकदम मिठाई है लग रहा हमरा।
1: अच्छा
0: सही कहा था नहीं?
1: अच्छा
0: भाटी मुँह से भी अच्छा लगेगा, भाटी भी कहाँ बनी
1: के बानी काम करता नहीं अपन।
0: खाना वाना खा के नहीं गिरा
1: का लागत
0: एकदम तेज नहीं बोला।
1: अच्छा
0: और सब बताए गोपालगंज के मौसम कैसा बा?
1: जी सब बढ़िया बा, गोपालगंज के मौसम बता दी तो धूप निकलल बा।
0: अच्छा पहले बढ़िया बा
1: जी, तो फिर आज कौन सा गाना सुने बा?
0: गाना आज सुने के बा, और वैसे रिक्वेस्ट करते नहीं कि जौन कल गाना बजाओ तो रही फर्स्ट टाइम मतलब अपन फरमा के याद रही बहुत बढ़िया सॉन्ग रही गाना होगा सुना जी। और इन्ना पांडे के आवाज में बजा दीजिए, करिश्मा जी गाके बता रही है।
1: ना ना रुआ के आज गवाई बरुआ गाई और सुनाई हमके।
0: हमारे गाँव ही नहीं क्या गाने में?
1: अच्छा वो सब नहीं के पता हमके, आज हम तो बहुत मुश्किल से रुआ बेटाइल बनी, तो रुआ गा के बताई अब हमके।
0: मुबारक हो तुमसे शादी तुम्हारी, सदा खुश रहेगी दुआ।
1: जी जी, तो ये गाना रुआ गा के बताई ना हमके, अच्छा लगे।
0: मुबारक हो तुमसे शादी तुम्हारी, सदा खुश रहेगी दुआ है। बजा दीजिए।
1: जी जी, और गाना सुनवाए के विवाह?
0: गाना सुनवाया तो लगे और भारती भी देखे, सुनी भी देखे और पूरा आरजे को सुनवाना है मेरे को।
1: जी गाना तो
0: स्पेशल में करिश्मा जी के।
1: हाँ जी,
0: आइए बोल रहे हैं कि स्पेशल में मनोरमा जी के।
2: दीदी
1: हाँ जी,
2: खाना ना हो गया?
1: जी हो गई बार, और भैया
2: दोबारा हो गई
0: बार खा ले बताएंगे काम में धाम कोई ले जा रही है।
1: अच्छा चलिए कोनो बात नहीं के, तो और गाना हम प्ले करता नहीं।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0976-575।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली।

0: बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और सुबह हो गया आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जब तक हमारे प्यारे प्यारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और गाने की बोल है नैनों ने बांधी। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी आप सभी सुन रहे थे मेरी तरफ से एक प्यारा सा गाना, नैनों ने बांधे दिल से डोर रे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, और क्या हालचाल है मैडम बताइए। तो बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा हालचाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग भारती जी, मैं अनिल छोटपुर से जुड़ गया हूँ और मुझे एक जानकारी चाहिए थी, एडवर्टाइजमेंट के लिए बात करना है, सर का नंबर सेंड कर दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी, और एडवर्टाइजमेंट के लिए बात करना है तो मैं आपको हमारे एडवर्टाइजमेंट टीम को आपका नंबर सेंड कर दूंगी और आप से बातें करा दूंगी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून आपको एंड साथ में सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून, और हम श्री राम सासाराम टू दिल्ली से जुड़ गए हैं और मेरी भी फरमाइश है, बजा दीजिएगा, धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपकी भी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार मैम, हम भी जुड़ गए हैं कृष्णा कुमार मुजफ्फरपुर बिहार कंटी प्रेमी छपरा से, और मैम कैसी हैं आप, बहुत दिनों के बाद आया हूँ और ये मुझे एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है, और अभी जो गीत चल रहा था दिल पे चलेना कोई जोर, बहुत ही अच्छा गाना लगा, उमा शंकर सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मदन चौधरी और मेरी पत्नी ममता देवी, बेटा कौटिल्य कुमार चौधरी असनी गया से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप। तो मैसेज करने वाले उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और लिख रहे हैं कि हम नान बाबू जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और मुझे भी गाना सुनना है। और सुनाना चाहते हैं सिया राम मंदिर अंजलि सीता सुदीप को, और लिख रहे हैं कि नजरें मिलते हैं दिल लगाया नहीं जाता, हर मिलने वाले को अपना बनाया नहीं जाता, और जो दिल में बस जाए एक बार उन्हें उम्र भर भुलाया नहीं जाता। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ यहाँ गाने की फरमाइश भी भेजे हुए हैं, और गाने की फरमाइश है जैसन सुचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, और काफ़ी बढ़िया गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
5: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून दिव्या भारती जी, नमस्कार, एक गाने की फरमाइश है, बजा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि नान बाबू भाई बलरामपुर वाले, आप बलरामपुर जिले के किस गांव से हो भाई? हम भी बलरामपुर जिले से हैं और हिदुली कला गांव से हूँ। जैसे सोचले रहनी वैसन धनिया, मस्त गाना बाजी। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए। और अभी जिसका मैसेज शामिल किए, मैसेज करने वाले थे प्रमुख जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से। लिख रहे हैं कि लिख कर दर्द किताबों में छुपाने से क्या होगा, जो समझना सके खामोशी उसे सुनाने से क्या होगा। वक्त ने मिटा दिया है कई पुराने निशान, अब बीते हुए लम्हों को जगाने से क्या होगा। और मुझे भी आज गाना सुनना है, लिंक भेज दिया हूँ। और लिख रहे हैं गाना काटना मत प्लीज़, गाना मज़ेदार है। तो जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरी की जाएगी और मैसेज करने वाली हैं रोशनी थामे से। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और श्रीराम सासाराम से जुड़े हुए हैं, सासाराम टू दिल्ली से जुड़े हुए हैं और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है और गाने की बोल है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:27 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो लिख रहे हैं भारती जी गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको। और भारती जी 5 मिनट का गाना भी पूरा नहीं बजाते हैं ऐसा। अच्छा वैसे गाना अच्छा है आप लोग बजाए तो जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3:30 बजाते हैं और आपका गाना तो थोड़ा अधिक था इसीलिए थोड़ा कम करना पड़ा। और मैसेज करने वाले हैं श्री राम और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि गुड आफ्टरनून भारती मनोरमा दीदी, और लिख रहा है पितृपक्ष श्राद्ध की शुभकामनाएं और हम लोग की गीत सुनना चाहते हैं और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसर राज, पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पर जी आपके भी गाने की फरमाइश को आज पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नैन टेलर शिवराजपुर से और मुझे भी आज गाना सुनना है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। पर जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं मंगलवार का दिन है, खुशियों की बहार है, रेडियो रिमझिम पर भारती मैम का प्यार है, आपकी मीठी आवाज़ जब दिल तक उतर जाती है थकी हुई शाम भी मुस्कुराती है, दोस्तों की महफिल में जब आपका साथ मिलता है हर पल जैसे खुशियों का गुलाब खिलता है, भारती मैम यूं ही मुस्कुराते रहिए अपने प्यारे दोस्तों को दिल में से सजाते रहिए। रेडियो की ये दोस्ती यूं ही बनी रहे खास, हर दिन मिले खुशियों की सौगात और अपनों का साथ। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है राघव जी की तरफ से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसके लिए लाइन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ गाने की फरमाइश पहुंची हुई, और गाना सुनना चाहते हैं कृष्णा कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हुए हैं, और गाने की बोल है दुनाली राजा जी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: हर जाए ना।
1: तो अभी हम लोग सुन रहे थे टुनटुन यादव का गाना दुनाली राजा जी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना था। और मैसेज करने वाले थे कृष्णा कुमार और लिख रहे हैं जो कि थैंक्स गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हेलो, और मुझे भी गाना सुनना है, और साथ में रोशनी अमित साहुल और को सुनाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तुम दिल से हमें यूँ पुकारा ना करो, यूँ तुम हमें इशारा ना करो, दूर है तुमसे ये मजबूरी है हमारी, तुम तन्हाइयों में यूँ तड़पाया ना करो। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है धनंजय कुमार सिंह जी की तरफ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सभी रेडियो दोस्तों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, और यदुवंशी हरकेश राजा देवापुर शहाबुद्दीन टोला से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, आपका शो सच में दिल को छूने वाला है। आपकी प्यारी आवाज़ और बातों का अंदाज हर श्रोता के दिल में अपनी खास जगह बना लेता है। जब भी आपका कार्यक्रम सुनते हैं मन खुश हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे आप अपनों से मुलाकात हो गई हो। रेडियो की दुनिया में आप सचमुच एक अनमोल पहचान है, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और लिख रहे हैं कि कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। रेडियो रिमझिम की वही प्यारी सी आवाज़ है भारती जी, जिनकी बातों में अपनापन और एहसास है। और लिख रहे हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे कोई अपना हाल पूछ रहा हो। हर शब्द में उनकी मिठास है कि उदास दिल भी मुस्कुरा उठता है। लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम की पहचान तो बहुत है, मगर दिलों में बसने वाली खास पहचान है हमारी भारती जी। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंचा हुआ है हमारे पास, और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं आप, अपना नाम ज़रूर बताएं, नाम तो बताए नहीं है कौन है और कहां से हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम ज़रूर बताएं, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहां हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोने जी, और गाना सुनना चाहते हैं, और वॉइस के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुँची हुई है और गाने को सुनाना चाहते हैं। खुशबू जी, शाहजहाँ जी, रेशमा जी, सबनम जी, रानी जी, गणेश भैया, भास्कर भैया, देवेंद्र भैया, उमा शंकर भैया, बिरजू भैया, फिरोज़ भैया, समीर भैया, राकेश भैया, सन्यासी रंजन बाबा, संदीप भैया, आर्यन भैया, कमरान जी, सागिर जी, आज़ाद जी, राघव जी, मुकेश भैया, अनुराग भैया, दिलीप भैया, मुन्ना भैया, MBBS, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त बिंदास झकास होंगे। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी हरपुर से, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश जो पहुंची हुई है वॉइस के माध्यम है, तो चलिए प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।

जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं? मस्त है ना? उम्मीद है एकदम मस्त और बिंदास आकाश होंगे आप, है ना? एक लिंक भेज रहा हूँ मैम, उसे प्ले कर दीजिएगा और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं मैं सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत संग सुना दीजिएगा। और सबसे पहले जितने रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तम सोने हरपुर से और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम मस्त और बिंदास आकाश होंगे, है ना जी। सन्यासी रंजन बाबा नमस्ते, प्रणाम, काल बाटे किशन बानी, हमके उम्मीद बाटे एकदम मस्त हो गए बुआ। और एगो लाइन सुनाओ, मैंने सुने हाँ अच्छा बाटे ओ वो कहते ना बंधन में नहीं कि बंधन में नहीं आत्मा में बंधे हैं हम दोनों। याद रखना, तुम जाओ या मैं जाओ, बिखरेंगे हम दोनों ही, है ना सर?

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी की, थैंक यू सो मच मैम, ढेर सारा धन्यवाद जी मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत भारती मैम नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम में और सुनील कुशवाहा मैहर MP से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा गाना चल रहा है रेडियो रिमझिम पे और खुदा करे सनम का नाम आए। और जी बहुत ही काफ़ी बढ़िया गाना था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए।

तेरी लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरी हर सांस में तेरे तेरा ही पैगाम आए। तू जब भी मुस्कुराए मेरे मेरी दुनिया संवर जाए, तेरी हर खुशी में मेरा भी मुकाम आए। रात हो या दिन बस तेरा ही ख्याल रहे, मेरे हर ख्वाब में तू और तेरा नाम आए। लिख रहे हैं थैंक यू सो मच उत्तम सोनी, डेडिकेटेड सॉन्ग फॉर मी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं रोशनी जी, सुनाना चाहते हैं। और हेलो जी, तो जी आपके गाने को प्ले करूँगी पर थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं, और गाने की बोल है रेली अरे। गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.8।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:54 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं आप सबको बता दूं कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम की वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ प्रमुख जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक्स डियर गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं का हाल बा भारती मैम रेशमा पठानपटी से। तो जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राज मोबाइल सर्विस बिशनपुरा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि तड़प के देखो किसी की चाहत में तो पता चलेगा कि इंतजार क्या होता है, यूं ही मिल जाए कोई बिना चाहे तो कैसे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मैं रंजीत शर्मा, मेरे साथ में है अमन शर्मा, और लिख रहा है मुझे भी आज गाना सुनना है, और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है हमारे पास और काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे हैं गाना सुनने के लिए, और यहाँ मैसेज करने वाले हैं न्यायपारा विरई जिला छत्तीसगढ़ बालोद से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईश्वर राज, पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। फिल्म है दिल तो पागल है और गाने की बोल है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: आए हाय।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886987।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि बसंत कुमार ठाकुर जी लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, प्यार का ताल्लुक अजीब होता है, प्यार मेरी थी और सिसक रहा था वो। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवलिया टोला से जुड़े बलुआ से हैं। और इसी के साथ यहां मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, वाओ सुपर सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहां पे अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी बहुत प्यारी हैं, गोपालगंज की शान और रेडियो रिमझिम की बेहद ख़ास आरजे हैं, और उनका शो भी उतना ही शानदार है, बातों में अपनापन, आवाज़ में मिठास और हर अंदाज में एक अलग ही खूबसूरती है। भारती जी का शो सुनकर सच में मन खुश हो जाता है। और काफ़ी प्यारी लाइन पहुंची हुई है, लाइन तो पहुंची हुई है पर आप अपना नाम बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मुझे गाना सुनना है, और नैन टेलर शिवराजपुर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं खेसारी लाल की आवाज़ में, और गाने की बोल है, अपना पापा के दामाद करे जा धोखे बनाए भो। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, प्रेम मधेसिया पटरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और लिख रहे हैं भारती जी वेरी गुड आफ्टरनून जी, कैसी हैं आप? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, और मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि यदुवंशी हरकेश राज जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हम सफर हैं नहीं, यादें हैं संग मेरे तू मगर है नहीं, इश्क के सफर में अंधेरे हैं बहुत, रात ही है बस कोई शहर है नहीं, कौन दिल लगी करा गया है साथ मेरे, पता जाने कि डगर है नहीं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है, और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मेरा गाना बजा दीजिए पवन सिंह की आवाज़ में है, और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश कल पूरी की जाएगी क्योंकि कल आपका दिन है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हुए हैं और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
5: नमस्ते मैम।
4: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी जी, क्या हाल चाल बा? अच्छा जी जी जी, बरखा तो खूब भइल बा।
5: गाना सुना दी।
4: बता दी। जी हाँ, गाना क्यों के सुना हूँ के बा? बता दी।
5: राम प्रवेश बारा तुलसी वाला, हरिंदर बारा किराना वाला, पप्पू बारा समोसा वाला, हम बने जब अपना रेडियो रंजन सुनता सब कोई बा।
4: जी जी, तो चले रहा और गाना हम प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
5: नमस्ते
4: नमस्ते।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और मैं आप सबको बता दूं कि आप फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां पोस्टर पे लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को नोट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर इजहार नहीं करता, तुम्हें खोने के डर से दिल की बात नहीं करता, तुम सामने आओ तो धड़कने बेवफा हो जाती हैं, हर बार तुम्हें देखकर खुद को संभाल नहीं पाता। और लिख रहे हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट में मेरी दुनिया बसती है, तुम्हारी खामोशी भी मुझे बहुत कुछ कहती है, काश तुम मेरी आंखों को पढ़ पाओ कभी, क्योंकि जो बात लफ्जों में कह नहीं पा सकता, वो मोहब्बत मेरी हर धड़कन तुम्हारे नाम करती है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंचा हुआ है, और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, कमलेश जी विलेज साव्या फील्ड गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धनेश मिश्रा जी को मेरा नमस्ते बोल दीजिएगा, और मैसेज करने वाले हैं अनिल छोटपुर से। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनीष जी, राम राम जी, तो आपको भी मेरी तरफ से राम राम जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अजीत कुमार शाह उर्फ हिटलर बिहारी हरियाणा से, और लिख रहे हैं भारती मैम क्या हाल चाल है जी, और भारती मैम को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, पर ऐसे गाने की फरमाइश करें जो मैं सुना सकूँ, आप अश्लील गाने की फरमाइश ना करें। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जहाँ भी देखूं अंधेरा ही अंधेरा है, तेरे सिवा कौन यहाँ मेरा है, और मैसेज करने वाले हैं

0: नाम तो नहीं लिखे हैं और शायद मैसेज करने वाले हैं जयकिशोर प्रसाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी और गाना सुनना चाहते थे, यदुवंशी हरकेश राजा जी के राज जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: सभी रेडियो दोस्तों को वेरी गुड आफ्टरनून, मेरा नाम यादुवंशी हरकेश राजा और मैं जयपुर से आवाज़ टोला करने वाला हूँ। आज मुझे जो गाना सुनना है, गाने का लिंक मैंने आपको भेज दिया हुआ है और ये गाना सुनाना चाहता हूँ। किरण कुशवाहा, मुकेंद्र जी, रिमझिम जी, पायल राज, ब्यूटी परवीन, गुड़िया कृष्णा, गुड्डू सर, शामदेव यादव और सभी रेडियो दोस्त के साथ।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
8: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: Thank you.

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:32:33 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर भारती जी, कैसी हैं आप और वाव सुपर सॉन्ग। इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं यदुवंशी हरकेश जी की, थैंक यू सो मच, सभी रेडियो दोस्त सुन रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बोतल पे बोतल पीने से क्या फायदा मेरे दोस्त, रात गुजरेगी तो उतर जाएगी, पीना है तो सिर्फ एक बार, किसी की बेवफाई पियो, जिंदगी सारी उम्र भर नशे में गुजर जाएगी। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से और लिख रहे हैं कि हरकेश भाई के लिए है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मंगलवार का लिख रहे हैं हमारा सॉन्ग चल जाएगा, एक सप्ताह हो गया क्या। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी, तो जी मुझे चेक करना पड़ेगा और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारा गाना नहीं बजेगा, मैम 3 दिन से मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश कल पूरी की जाएगी क्योंकि आपका एक हफ्ता अभी कल पूरा होगा। और यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि माय नेम इज शाहजहां और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी आपके भी गाने की फरमाइश को आज पूरा किया जाएगा क्योंकि आज आपके दिन पूरे हो चुके हैं। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि मेरे प्रिय आरजे भारती जी नमस्कार, और लिख रहे हैं कि अनिल भाई को नमस्कार बोल दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से और लिख रहे हैं कि सोचो उस पल दिल कितना मजबूर होता है जब कोई किसी की यादों में चूर होता है, प्यार क्या है पता तब चलता है जब कोई किसी की नज़रों से दूर होता है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तुम्हारी यादों में अक्सर खो जाते हैं जैसे सुबह की धूप में फूल खिल जाते हैं, तुम्हारा इश्क है मेरे जीने की वजह, वरना हम तो कब के टूट जाते हैं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन नीरज सिंह जी की तरफ से पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा ये गाना सॉन्ग सुन के। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बोल है सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट।

0: द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
2: थोड़े से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच गया है शहाबुद्दीन अंसारी जो कि फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सॉन्ग प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं कि सब कुछ भी नहीं मिल जाता इस ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए। और बात तो बिल्कुल आपकी सही है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मंगलवार की दोपहर है, मौसम भी सुहाना है, भारती मैम की प्यारी आवाज़ में महफिल को सजाना है, आप मुस्कुराकर बोले तो हर दिल खिल जाता है, आपका प्यारा अंदाज सुनकर चेहरा भी मुस्कुराता है, दुआ है यूं ही सजी रहे आपकी हर शाम और हर दोपहर, भारती मैम आपकी बातों से खुशियों से भर जाए हर दिल का शहर। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी, और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्कार प्रणाम भारती मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्ज़ापुर टू मोहल्ली पंजाब से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं आज भी मेरे भी गाने की फरमाइश है, लिंक भेज दिए हैं और डेडिकेट ऑल फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि विलेज मोगल बरीचा से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को आज पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि यूं नजरें वो नीचे किए चले जा रहे हैं, यूं नजरें वो नीचे किए चले जा रहे हैं, पास आंसे खड़े यूं परेशा हुए जा रहे हैं, कोई कहता है जालिम अपनी नज़र तो उठा, हम तेरे रुख का दीदार करने को मरे जा रहे हैं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार सिंह जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम नमस्कार, हम भी जुड़ चुके हैं आपके शो में और हमें भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैसेज करने वाले हैं राहुल जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, रोहित देहरादून से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की लिंक भेजे हुए हैं, और गाने की बोल है शादी करके फंस गया यार, जुदाई मूवी का गाना है, और लिख रहे हैं कि गाना थोड़ा पूरा बजाने का कष्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894704 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं रोहित देहरादून से कि मुझे 4 चीज़ बहुत पसंद है, एक तुम, दूसरी तुम्हारी खुशी, और तीसरी तुम्हारी मुस्कान, और चौथी तुम्हारी आवाज़। और भारती जी, आप कोई भी मैसेज पढ़कर हंसती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाना प्ले करने के लिए शुक्रिया, और शादी करके पछता नहीं रहा हूँ, गाना अच्छा लगता है। तो आप पहले ही कंफर्म कर रहे हैं ताकि मैं आपके गाने को लेकर आप पे कोई कमेंट ना करूं। चलिए बढ़िया है, और गाना आपका काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा था। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं लेकिन आपका इंस्टा नहीं है। तो जी मैं बता दूं, मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और रेडियो रिमझिम के नाम से हमारा इंस्टा आईडी है, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा कब बजेगा, और मैसेज करने वाले हैं राहुल जी। तो जी आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय बाबा के नगरी से खेसारी लाल यादव जी बोल रहे हैं, और गाने का फरमाइश है बोली तो भेजो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती मैम मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोल लूँ तो तेरा नाम आ जाता है, कब तक छुपाऊँ दिल की बात, उसकी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिनेश कुमार मिश्रा जी की, पति अजी सुनते हो हमारी शादी करवाने वाले पंडित जी का देहांत हो गया है, और पति एक ना एक दिन तो उसे उसके कर्मों का फल मिलना ही था। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँचा हुआ है दिनेश जी की तरफ से, और लिख रहे हैं शादी करके फंस गया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भाई सुनवाए उनको दिल से धन्यवाद। तो गाने की फरमाइश करने वाले थे रोहित जी देहरादून से। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राघव जी की तरफ से दोपहर की चाय पहुँच गई है, तो सभी लोग आ जाइए पीने के लिए। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मुझे गाना सुनना है, अस्सलाम वालेकुम भारती मैम और मनोरमा मैम, कुवैत से हम जौहर आलम और वॉइस के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजे हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए जानते हैं क्या है आपकी फरमाइश।
9: सलाम अलैकुम, नमस्कार मैडम, और हम कुवैत से जहूर आलम वॉइस मैसेज कर रहा हूँ। हमको गाना सुनना है परदेसी, परदेसी गाना नहीं, उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज़ में, और ये गाना सुनवा दीजिएगा, राजा हिंदुस्तानी का मूवी का गाना है ये।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनाने के लिए और बजाने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और जौहर आलम जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शादी का ये पावन बंधन खुशियों से भर जाए, दो दिलों का ये प्यार रिश्ता उम्र भर मुस्कुराए, हर सुबह नई उम्मीद हो, हर शाम प्यार लाए, रब से बस इतनी दुआ है ये जोड़ी हमेशा हंसती रहे और खुशियां ही खुशियां पाए। और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम कृष्णा कुमार, क्या हाल है आपका भारती जी, और अभी प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और प्रोग्राम रेडियो रिमझिम में, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अलीसा महीना गोपालगंज से, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त एंड अच्छे हों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी हम सब अच्छे हैं, और आप बताइए आप कैसी हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं रोहित जी, और लिख रहे हैं ऐसी वाड़ी बोलिए सबसे झगड़ा हो, पर उसको ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो, और क्या बात है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आपके होने से हमारी खुशी जुड़ी हुई है, आपकी आंखों से हमारी रोशनी जुड़ी हुई है, मत करना दूर अपने होठों से ये मुस्कुराहट, आपकी इस हंसी से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं सनी जी, और लिख रहे हैं मुद्दते हो गई हैं चुप रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते, हम भी राहों में खड़े हैं कि शायद कोई आवाज़ दे, लोग तो यूँ गुजरते हैं जैसे कोई था ही नहीं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सनी जी, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और बहुत दिनों के बाद भेजा हूँ, न्यूज़ से पहले बजा दीजिएगा। और नमस्ते भारती जी, गुड आफ्टरनून। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं। और पवन सिंह की आवाज में गाना है और गाने की बोल है बिहारी के दम। गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ सनी जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर दोपहर न्यूज़ के बाद। तब तक आप सभी इंजॉय करते रहें।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
8: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।
9: West Indies in the first T20 match at Lucknow this evening. With that, we end the midday news.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों धारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और धारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधुपेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दो गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टेचुबिलिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश की सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपने नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
7: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
7: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
8: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हूतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
11: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
12: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
12: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है।

0: आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
2: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80035876 या 95997-27982।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: थोड़े से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। जी हाँ, 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ, 7277-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं राहुल जी, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, और गाने की बोल है दिल तन्हा तेरे बिना, और टाइगर श्रॉफ की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, टाइगर श्रॉफ का गाना सुनना चाहते हैं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है राहुल जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दी, रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को प्रणाम है और मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और क्या हाल है भारती दी, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और आप बताइए आप कैसी हैं। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रही हैं रोशनी जी, गाना सुनना है और गाना सुनवाना चाहती हैं अमित साहुल और सभी लिसनर को सुनवाना चाहती हैं। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है और गाने की बोल है नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, इंसानियत के देवता मूवी का गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यार यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हाय मनोरमा दीदी का हलवा। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पीपला नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा हाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाली हैं रोशनी थावे से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है काजल जी की तरफ से कि जो कि बोल रहे हैं कि मैम मुझे भी गाना सुनना है, और जो गोपालगंज के रहने वाली हैं और अपनी फरमाइश लिंक के माध्यम से भेजी हुई हैं। तो चलिए काजल जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुने थे काजल जी की तरफ से, और गाने के बोल थे दैया दैया दैया रे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँची है, जो की लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है जी, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा हाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, और जो कि लिख रहे हैं कि हमारे प्रिय आरजे रानी मुखर्जी यानी मनोरमा जी, दिल से प्रणाम बात, तो बहुत बहुत स्वागत बराबर भी। और मैसेज करिए लवानी दिनेश कुमार मिश्रा जी, और हमारे तरफ से रउआ के भी प्रणाम बा। और हमारा नाम तो का ही बताएं कि रउआ लो नाम रख दिले वानी लोइसन। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, जो कि लिख रहे हैं कि जी मनोरमा मैम उर्फ रानी मुखर्जी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप। तो जी मैं तो ठीक हूँ, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। और आप इन लोग का असर आप पे भी पड़ गया है ना, जरूर बताइएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि बहुत लेट हो गया है आज, और लिख रहे हैं कि इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। आपके यहाँ बारिश हो रहा है क्या, जरूर बताइए। तो नहीं, हमारे तरफ तो बारिश नहीं हो रही है। और मैसेज करने वाले हैं, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी पिपरा नारायण से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, जो कि लिख रहे हैं कि सॉन्ग फूल गुलाब का, और मैं राज किशोर देवघर झारखंड से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहा है, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं कि दोपहर के बाद एक बार फिर से रेडियो रिमझिम में जुड़ गया हूँ और गाना बहुत ही अच्छा चल रहा है, दैया दैया दैया रे। और मैसेज करने वाले हैं सुनील मध्य प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी फिर से लग गई। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाओ सुपर सॉन्ग, और लिख रहे हैं कि आप मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे मैसेज को शामिल करिए, तो जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे। और लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी के नमस्ते बा दीदी, और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिनेश कुमार मिश्रा जी, जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार जोक पूछे हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं कि अपने वकील पति से पत्नी ने कहा कि जी फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा, पड़ोसन के यहाँ दोनों चीज़ें हैं। वकील पति ने मुस्कुराया, जवाब दिया कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बसाएं, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि बिल्कुल मैम आपका आवाज़ रानी मुखर्जी के जैसे ही है, और आवाज़ आपका, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो सच्ची ऐसा है क्या, ज़रूर बताइए। लो लिख रहे हैं कि सही बोलते हैं लो, अच्छा जी ये बात है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हमें भी गाना सुनना है मैम, सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम भारती मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहाली पंजाब से, आज मेरा भी फरमाइश है, लिंक भेज दिया हूँ, डेडिकेट करना चाहते हैं ऑल फ्रेंड्स को, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद मनोरमा मैम गाना बजाने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर जो कि मिर्जापुर टू माली पंजाब से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। पता तो सब चाहता है, पाना तो सब चाहता है, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होता। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि नयपारा भिरई जिला बलोच छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर और पप्पू ठाकुर जी जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि रेडियो रिमझिम परिवार में जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार सिंह उर्फ टिहली बिहार से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि इस कदर तबाह हुई कि तबाही दिखी नहीं, इसकी इलाज दवाई मिलती ही नहीं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और नाम मेंशन नहीं किए हैं तो प्लीज़ नाम मेंशन करिए। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है सिमरन जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो मैम, मैं सिमरन कुशवाहा और मुझे भी गाना सुनना है और गाने के वो लिंक के माध्यम से। तो चलिए सिमरन जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि गुस्सा बानी का हमारा मैसेज शामिल नहीं की करत मनोरमा दीदी, और मैसेज तो ना जी रोगा से हम काहे ला गुस्सा होके हमारा मैसेज के भी हम शामिल करें, बस कुछ देर वेट करें। और मैसेज करिए अला बानी गणेश कुमार जी, जो कि पिपरा नारायण के रहने वाला बानी, लिखा था कि चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है, चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है, हमें बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मैं तो तारकेश्वर माझी दुबई से, और लिख रहे हैं कि मैडम जी मुझे भी एक गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि शमशेर मुंबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है एक बार फिर से। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ मैसेज पहुंची है जो कि लिख रहे हैं कि मैं भोजपुरी शहरी, लिख रहे हैं कि हम तुझसे सच्चा मोहब्बत जरूर करब। और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं कि क्या खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है मनोरमा यानी रानी मुखर्जी, आपकी आवाज़ वाकई में सेम रानी मुखर्जी जैसी है, इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और मैसेज करने वाले हैं बसंत कुमार ठाकुर जी, तो वाकई में आप लोग मेरा नाम रख दिए हैं लो, तो चलिए मैं भी मान ही लेती हूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी फरमाइश पूरा कीजिए, और लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम परिवार में जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार शाह उर्फ हिटलरी बिहार से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है पुराना बेफाई सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में, और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम आपकी आवाज़ में कितना मिठास भरा हुआ है, तो अच्छा ऐसा बात नहीं है। चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम।

और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, आपको दिल से धन्यवाद मनोरमा मैम जी। और मैसेज करने वाले अजीत कुमार शाह जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो

करिश्मा कुमारी जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मेरी माँ कहती हैं, बेटा किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मन समान गरीब भरो। अरे आप लिख रहे हैं कि मेरी माँ कहती हैं, बेटा किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर पे नहीं मिलता। तो बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और मैसेज करने वाले थे गणेश कुमार पिपरानारायण से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए मैम, हम सोनू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख देंगे थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं रात में ईश्वर से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही लिख रहे कि रात में ईश्वर से मुलाकात हुई थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने आपके बारे में पूछा कि मनोरमा मैम और भारती मैम कैसी हैं, ईश्वर बोले रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसी हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी UP 54 से, और लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए मनोरमा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी, और मैं आपको बता दें कि वाकई में आप क्या लाइन लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपकी शायरी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि आँखों का पानी और दिल की कहानी माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता, तो बात सही है। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जो कि पिपरा नारायण के रहने वाले हैं, और मैसेज किए हैं जो कि लिख रहे हैं कि रानी जी के का हलवा ज़रूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैन नमस्कार, मैं इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से, और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, और बाय बाय के मैसेज भी पहुँच गया है सबकी तरफ से। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम एवं रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को नमस्कार, मैं नंद किशोर शर्मा नवानगर सिगरौली ब्रह्म प्रोग्राम। और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम को सही सुचारू रूप से मैसेज करने के लिए हृदय से आभार धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ये गाना जो अभी चल रहा था, जो भी भाई मैसेज किया है और आपके पास, उसको भी मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। और गाना प्ले करने के लिए भी दिल से धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार पित्र नारायण से। और श्रोताओं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि समय हो गया कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776695। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और मैं लूँगी आप सभी से विदा। तब तक के लिए यहाँ पे फरमाइश पहुँचिए, इनकी फरमाइश को हम पूरी करते हैं और फिर मिलते हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034 48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

होई ता बिहान होई बेकरी खैला से बेसी होई ता जियान होई बेकरी आर खिलल बगिया जबू

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तब भौजी, आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
12: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
11: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
9: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
13: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू।

0: जब बुझ जाई समैया चाहे कतनो तेल लगा लो अरे खा लो दूध मलैया।
1: राम नाम आधार बा एह जीवन में, यही से कवि कहतड़े देही का कहतड़े।
0: राम नाम रस पिय, राम नाम रस पिय भैया हँसी हँसी।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 पर।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94-512-11001।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

दिल के अरमान बना के तोहके दिल में राखब, दिल के अरमान बना के। अरे जान जबले रही कसम से तोहके जान बना के।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के

0: ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 300 99 66 999।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
3: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494। जी हाँ, 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
4: हेलो जी, गुड मॉर्निंग।
5: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
4: जी भारती जी, या मनोरमा जी?
5: जी मैं मनोरमा
4: जी, साथ मास्टर ग्राम धना और अवसर जगह से।
5: कैसे हैं आप?
4: ठीक हैं, अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं?
5: जी हम भी बढ़िया।
4: कई दिनों के बाद फोन कर रहा हूँ, इधर छोड़ दिए थे हम, कहा फोन कर रहे हैं, खाली विज्ञापन तो हम लोग सुन रहे हैं। और क्या सुन रहे, थोड़ा सा खाली विज्ञापन सुन रहे हैं। और सब बताइए, कैसा मौसम है आपकी तरफ?
5: जी मौसम तो बता दो कि धूप निकला हुआ है।
4: जी हाँ, धूप तो हम लोग की तरफ भी बहुत निकल रहा है। दशहरा की तैयारी हो रहा है ना?
5: जी जी, अब तो दशहरा भी आने वाला है।
4: चलिए ठीक है, यार वो उसमें जुड़ा जाएगा 12 बजे से।
5: जी बिल्कुल।
4: मैडम जो गाना सुना दीजिए, नगीना मूवी का।
5: जी, और गाने की बोल।
4: आज कल याद कुछ और रहता नहीं,

0: और सबसे पहले आपको सुनना चाहता हूँ और भारती जी जी को भी और जितने रेडियो दिन भी मैं सभी श्रोताओं को और हम लोग सुनेंगे रोशन ट्रेलर में धनाव से।
1: मैं बता दूँ आप बहुत ही अच्छा गाना गा लेते हैं।
0: अरे कभी हम लोग का यही काम है दिन भर रेडियो सुनना गाना सुनना क्या किया जाए गुनगुनाना।
1: जी जी बहुत ही अच्छा लगा
0: जी। आज बच जाएगा ना शाम में। जी ठीक है तब पहला कॉल था मैडम।
1: जी जी पहला ही कॉल था
0: जी। चलिए इंतजार रहेगा 12 बजे फिर मिलेंगे।
1: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी
1: चलिए सबके साथ रेडियो रिंग जिम 95.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
0: जी बोलिए,
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: जी मैम, मेरा नाम अशोक सोंधिया है।
1: ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी?
0: मैं राजगढ़ से बोल रहा हूँ। राजगढ़? राजगढ़।
1: अच्छा, ये कहाँ पड़ता है?
0: जिला राजगढ़ पड़ता है मैडम।
1: अच्छा जी, तो और अपना नाम क्या बताया है?
0: अशोक सोंधिया।
1: अच्छा जी, तो क्या आप हेलो मैच में पहली बार कॉल किए हैं?
0: जी मैम।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगिम का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है मैडम, तभी तो लगाया ही।
1: अच्छा, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: क्या तुम्हें पता है
1: हर ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम। हाँ मैडम, किसी को सुनवाना भी चाहते हैं। हम भी सुनना है।
1: अच्छा, तो
0: हमारे सुनील साहब जी है।
1: अच्छा जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: हाँ करो मैम
1: जी। रेडियो 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।

0: खून पे।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856-587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-9911। जी हाँ, 8009-94-9911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, नमस्कार।
8: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: जी, आपका भी स्वागत है कॉल उठाने के लिए, बहुत देर लगा दी उठाने के लिए।
8: जी जी, कॉल नंबर शो नहीं कर रहा था।
9: अच्छा अच्छा, और आप कैसी हैं?
8: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं?
9: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और
8: जी, तो आप दिलीप जी बोल रहे हैं?
9: हाँ। जी जी बोल
0: जी जी आप
9: इसलिए तो कहा कि रानी मुखर्जी देखते हैं कि आवाज पहचानती हूँ।
0: जी जी आपने मेरा इतना मतलब नाम रख दिया कि आप देखने से सब कोई कह रहा है। जी
9: क्या करें, बस आप लोग से जुड़ाव बना हुआ है, हम लोग आज से नहीं कई साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। बस आप लोगों को आवाजें होती है और रेडियो लिसनर की प्यार मोहब्बत होती है, जो नींद खुलते ही कहा होता है कि आकर्षित करता है कि चलिए हम लोग जुड़ जाएं और सभी दोस्तों के बीच सम्मिलित होकर हम लोग को आवाजों को सुना जाए, अपनी भी आवाजें रखा जाए, जिसे बहुत आनंद मिलती है।
0: जी जी।
9: आज हमारी ये फरमाइश थी, जानती है फरमाइश क्या है?
0: जी बता दीजिए।
9: आज की फरमाइश है कि हमारे रानी मुखर्जी अपने मन पसंद से जो है हमारे लिए गाना अच्छा था भोजपुरी गाने को भी सुनाए और सभी दोस्तों को भी सुनाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बजाइएगा तो गलत बजाइएगा, इतना तो नहीं है कि आपकी पसंद हमारे पसंद ना मिले तो ही तो हो ही नहीं सकता। जो भी गाना पसंद से अपने चलाइएगा तो हमको भी पसंद आएगा और लिखना को लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं तो गाना फरमा सकता था लेकिन बस आज आपके ऊपर डाला हूँ।
0: अच्छा जी
9: हाँ, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गाना चलाइएगा। आप जानते हैं कैसे गाना हम लोग सुनते हैं, उसी तरीके से चला सकिएगा।
0: कोशिश करेंगे, काम कर रही है अपना।
9: तो आज मैं काफी दिनों से आपसे बात नहीं हो रही थी ना, आज देखते हैं हो सकता है कि रानी मुखर्जी जी से बात हो जाए।
0: आपने मेरा नाम
9: क्या करें, जिसकी आवाज ही उनकी जैसा सम्मिलित है और मेरे को लगता है कि रानी मुखर्जी जैसा आपका भी गेहुआ रंग होगा, इसलिए रखती है।
0: अच्छा जी,
9: तेजना से इनकी जो बातें विचार है उसको जांच पर चलना पड़ता
0: है। और भी लिसनर लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि दिनेश जी नाम रखे हैं रानी मुखर्जी, तो हम लोग भी बोलेंगे लोग
9: बोल। अच्छा ये बताइए, बोलने में ऐसी करने में कोई गलत तो कोई इंसान बोलता नहीं है, ये आपका जज्बातों के ऊपर आपकी आवाज की वजह से आपको रानी मुखर्जी नाम रखा गया है।
0: जी जी मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे, आपने इतना मुझे प्यार दिया और आप लोगों के सपोर्ट से मैं भी प्रोग्राम कर रही हूँ धीरे धीरे।
9: सीख के नहीं आता है, यही तो सीखना पड़ता है। फिर कभी बात होगा और भी कोई लाइन में लगा होगा तो होंगे, तो फिर कभी बात होगी हमारी आपकी। तो आपको भी नमस्कार, गाँव को भी नमस्कार। तो आइए
0: जी, नमस्कार। तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
9: ओके धन्यवाद,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
10: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
9: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
10: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
9: कहाँ?
10: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
11: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
12: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
11: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
12: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
11: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
12: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
13: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
14: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
13: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
15: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
16: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: Hello.
6: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम में।
6: जी नमस्ते।
17: जी नमस्ते,
6: क्या हाल समाचार?
17: जी सब ठीक बा, आप बताए?
6: बढ़िया बा।
17: वैसे नाम बता दिए अपन?
6: हम पचखला से भोला जी बोलते हैं।
17: जी जी, और सब बताए? रघुआ ठीक बा नहीं?
6: भारती जी बोलते नहीं? भारती जी बोलते की मनोरमा जी?
17: मनोरमा
6: जी भेट भाई भारती जी शायद कल से भेट होगा।
17: और बताए खाना ना बढ़िया?
6: सब कुछ हो गए।
17: कौन सा गाना सुने?
6: गाना सुने साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल में करार है।
17: जाके बता सकते
6: गाना? तो देखिए गाना तो गाओ तो नहीं, लेकिन गाना देखे अभी सुने की इच्छा करे, गाओ की इच्छा ना करे।
17: कौन बात नहीं थे? और गाना कैसे सुनाए की
6: सब कोई रेडियो रिंगटोन के पूरा पूरा टीम सब रही?
17: चलिए तो फिर अब गाना हम प्ले करते नहीं?
6: जी कल बजे सब
17: जी। चलिए तो फिर प्ले करते हैं, सुन रहे हैं सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 एफएम में।
0: आपको धन्यवाद मैडम।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया है, ठंडे मौसम का जायका ले रहे हैं।
1: जी जी, तो उमा शंकर जी, क्या आप पहली बार हेलमेट स्टेशन कॉल किए?
0: नहीं, मैं तो कई बार कॉल कर चुका हूँ।
1: चलिए, तो ऐसे लग रहा है मुझे आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: नहीं, आप कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं मनोरमा।
0: हाँ, तो आपसे मेरे ख्याल से एक बार पहले बात हुई होगी, क्योंकि मैं किसी का नाम पूछता ही नहीं हूँ। आपने इस ऑप्शन दिखाया कि मुझे नाम पूछना पड़ रहा है। हाँ, बातें कर लेता हूँ, फरमाइश कर लेता हूँ, तभी मैंने किसी से नाम पूछा ही नहीं आज तक।
1: कोई बात नहीं है। आज तो कौन सा गाना सुनिए आज?
0: हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता, और गाने का बोल भी यही है हरियाली और रास्ता।
1: क्या आप मुझे गा के बताइएगा?
0: अब गाना तो मैं भूल गया हूँ, बस ये चलते चलते मुझे ध्यान आया, हमने कहा इस गाने का फरमाइश करना है, हरियाली और रास्ता बसाकिस्तान। और हमको तो गाना गाने आता ही नहीं है, हमने कभी इंटरेस्ट भी नहीं दिया गाना गाने में, और डेलिकेट रहे श्रोता है सभी लोगों को।
1: एक बार और गाने के बोल बता दीजिएगा तो बेहतर होगा।
0: हरियाली, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता, टाइटल सॉन्ग है।
1: चलिए, तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: जी जी, धन्यवाद।

0: सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा।

0: pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो रेडियो रिमझिम।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
3: जय भवानी।
2: जय भवानी।
3: कहीं अपन हाल चाल?
2: जी हमारा हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताइए रवा कैसन बानी?
3: ठीक बा भवानी, हमारा हाल चाल ठीक बा। रउे तो पूजा करी ले, रउे तो इबादत करी ले, तो हमरा के गाना सुने के बा। हम तो शास्त्रीय राग पर आधारित गाना सुनी ले, आज से ना बहुत दिन हो गई। तो हमरा सुने के बा शोभा गुट्टो के गावल, तो सूरजमुख होना जाइबे बिंदिया बिंदिया धूमिल हो जाबे।
2: जी
3: शोभा गुट्टो का गाया हुआ ये राग ये इस पर आधारित दादरा पर राग दादरा है।
2: जी जी।
3: इस गाने को गाया है शोभा गुट्टो ने, सूरजमुख ना जाइबे बिंदिया धूमिल हो जाबे।
2: वैसे कहाँ से बोलता
3: है? हम बोला तानी देवता ग्राम भलही से, जामो बाजार जिला सीमान।
2: अच्छा,
3: बद्री नारायण मुनि।
2: जी जी। तो रउआ का हेलो मैच में पहली बार कॉल के लिए बानी?
3: ना तो 3-4 बार कर चुके नहीं, 4 बार।
2: अच्छा।
3: हम अपन गाना फरमाइश करी ले, यानी हम सुनी ना सुनी लोग सुनेला, फरमाइश कर दे लोग सुनी, हम सुनी ना सुनी कोनो बात नहीं है।
2: जी जी बहुत अच्छा लगेला फरमाइश करे नी तो।
3: हाँ, हम तो ज्यादातर शास्त्रीय राग पर आधारित गाना सुनी ले, ज्यादातर लोक धुन पर आधारित भी गाना सुनी ले, जैसे राजस्थानी हुआ, बंगाली हुआ, पंजाबी हुआ, ये सब गाना जो लोग धुन पर आधारित गाना बा वो सुनी ले।
2: अच्छा लगेला गाना लेकिन ये सब।
3: हाँ, सूरजमुख ना जाइबे बिंदिया धूमिल हो जाबे, ये शोभा गुट्टो का गाया हुआ गाना है। बहुत तरह का गाना है शोभा गुट्टो का गाया हुआ जो सुर सम्राज्ञी है।
2: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाइएगा भी?
3: हम तो जितना लिसनर है, हमारे भाई बहन है, हमारे जितने रेडियो रिमझिम के श्रोता है, सबको मैं सुनवाऊंगा और मैं भी खुद सुनूंगा। और सबको ये गाना जो है ना शास्त्रीय राग पर है, सबको गाना ये अच्छा नहीं लगता। जो उसको समझ रखता है, जो उसको ज्ञान है, जो उसको बुद्धि है शास्त्रीय रागों पर, उसी को समझ में आएगा।
2: जी जी। चलिए तो फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
3: ठीक है जी। कब सुनेंगे आप
2: ये गाना? आपका कल बजेगा।
3: ठीक है। शाम को 5 बजे?
2: जी जी, 5 से 7 के बीच।
3: ठीक है जी, धन्यवाद
2: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
3: जय भवानी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है।
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते,
0: क्या हाल है
1: जी? ठीक है, आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
0: स्लो है?
1: नाम बता दीजिए अपना। तो नंदनी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? आपको कौन सा गाना सुनिएगा? कौन सा?
0: मारे
1: मारे अखिया। ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगी? ओके नंदनी जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick your phone up.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम।
12: नमस्ते मैम, कैसी हैं?
11: जी नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं?
12: ठीक हूँ।
11: आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
12: मैं भी ठीक हूँ, अब जा रही
11: आवाज़? जी जी आ रही है। अपना नाम बता दीजिए।
12: मेरा नाम तृप्ति है।
11: तृप्ति
12: जी?
11: तृप्ति जी कहाँ से बोल रही हैं?
12: गोपालगंज से।
11: अच्छा जी, तो तृप्ति जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?
12: सुरचला सुरचला इंजाहो से दिलचला जो भी मैं प्यार करता हूँ।
11: तो क्या ये आप मुझे गा के बता सकती हैं?

0: जी, गाना तो बहुत ही अच्छा गा लेती हैं आप।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। और ये गाना जो बताएंगे वो आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: मेरी सिस्टर स्टेडी है, सिंगल है, और बाकी जो रवि सिंह है उनसे भी को, और भारती मैम को।
0: ओके दीप्ति जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिंगिंग 90.4 FM
1: जी। सुना
0: जी, नाम बता दीजिए अपना।
1: पवन जी बोल रहे हैं।
0: और कहाँ से?
1: सुबह से।
0: हेलो, तो कैसे हैं पवन जी?
1: ठीक है, आपने सुना? आप भी ठीक है ना?
0: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो पवन जी, कौन सा गाना सुनिएगा?
1: उस लड़की से दिल आया है जिसने मुझे सताया है।
0: गाना तो काफी खूबसूरत है
1: जी।
0: क्या ये गाना आप मुझे गाके बताएंगे?
1: पूरा याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं है, आप बस दो लाइन गाना है आपको।
1: जी, लड़की से दिल आया है जो जिसने मुझे सताया है। मेन बात है कि हम लोग गाना नहीं गाते हैं ना, इसीलिए।
0: चलिए चलिए, कोई बात नहीं है,
1: अगला बार याद करके जरूर सुनाएंगे आपको।
0: जी जी बिल्कुल, हम वेट करेंगे आपका।
1: जी जी,
0: और ये गाना जो बताया वो डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ, पूरा गोपालगंज जिला लोग आपको भी। दोस्त है, इरफान है, अर्जुन है, चंदन है, सुमंत है, बब्बी है।
0: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हाँ, हुआ गोपाल मंदिर गेट के सामने।
0: अच्छा जी, चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
1: जी जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते।

0: जी।
1: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: तो दोस्तों
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
11: सलाम अलैकुम मैम।
12: जी वालेकुम अस्सलाम।
11: जाकिर हुसैन,
12: जी जाकिर जी, कैसे हैं?
11: हम ठीक है मैम, अपना बताइए।
12: जी हम भी बढ़िया।
11: अरे मैम, थक गए थे पूरा कॉल लगा लगा कर, पूरा अभी थक गए हैं।
12: अच्छा जी।
11: बहुत ओवर से कॉल लगा रहे हैं।
12: बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना?
11: हाँ मैम, बहुत मेहनत करती है। सही बात है ना, मैम हमको अच्छा लगता है, इसी सबसे मेहनत करते हैं।
12: अच्छा जी, चलिए हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना
11: सुनना चाहते हैं।
12: जी बिल्कुल, बता दीजिए।
11: आए और अब्बा दिल जलता है, झूठे सबे पिलाते हैं, प्यार बात निभाने देखो प्यार के सुनते आते हैं।
12: जाकिर जी, गाना गा के बताइएगा मुझे।
11: थोड़ा बहुत याद है,
12: बोला ही नहीं गया ये।

0: गाना सुनना चाहते हैं
1: जी जाकिर जी, और ये गाना आप डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ मैम, जो अपना दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: सबसे पहले आपको और रेडियो रिव्यू के जितना परिवार है उन लोगों को, और सुखी आलम, मेराज आलम, यूसुफ अली, मोहम्मद कूब, उसके बाद जितेश शर्मा, बस मुकेश शर्मा, रविंदर शर्मा, बस इन्हीं लोगों को सुनाना चाहते हैं।
1: ओके जाकिर जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं जादवपुर से बोल रहे हैं, गोपालगंज।
1: गोपालगंज जादवपुर?
0: हाँ हाँ, गोपालगंज जादवपुर।
1: अच्छा, ये जाकिर जी, तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ओके मैम।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसे बोल रही पठान पति से?
0: जी जी, कैसन बानी?
1: ठीक बानी, अपन बताइए।
0: हमरो ठीक बा, बड़ा ढेर दिन पर मिलल बानी।
1: बहुत दिन से मिलल बानी, फोन करके टाइम नहीं मिलल, फोन कहाँ कर रही।
0: अच्छा, इतना बिजी बानी?
1: आज भोर पर अभी आज तो पढ़े डेरे चल कर तब याद पता के फोन लगी तुम।
0: अच्छा, वो हम तो कहीं की हमनी से किसी आई बानी का की फोन होना की करत
1: तो वाला से किसी आई बानी कहीं का है। दो दो अटवाद बीत गए तो और ना फोन था तो ना गाना बजाओ तो नहीं फोन तो नहीं तो व्हाट्सएप से गाना भेजे नहीं कालो
0: जी जी हम हाँ हाँ नाश्ता पानी सब हो जाए। जी बताए की आज के क्या बार और फरमाइश
1: मस्तूरी गाना बाबा की मगई मगई सत्य चीट के पथल दिन डाल कर डॉक्टर से सत्य चीट के पथल दिन डाल
0: सरकार के बता सकते नहीं गाना
1: ना मैडम ये गाना नहीं आदमी के नहीं अच्छा लगे तो कन्या जी बता दी।
0: अच्छा ठीक, मैं पूरा कोशिश रही की रब गाना ये बाजी और सुनाए की विचार तो नहीं
1: और सुनाए रानी बोले बड़े रखो से जितना लोग सुनी।
0: अच्छा चलिए,
1: ऐसे रो से बतिया के तो बोला आदमी तो बहुत ही अच्छा लगे ला दोस्त की तो बात होने जिंदा।
0: जी जी, हमके भी बहुत ही अच्छा लगे रोज से बात करके।
1: सही बात, अगर रिकॉर्डिंग की बात न हो तभी हर बात से बात कर
0: लेगी।
1: रोज से बात करो बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिलेगा।
0: चलिए तब
1: फोन लगाएंगे ठीक है, रोज से बात
0: वैसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगे। चलिए तो एक ही साथ गाना प्ले कर रही।

0: जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
12: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
13: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
14: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
15: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
16: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
17: थैंक यू मैम। सलाम अलैकुम, क्या खैरियत है?
18: जी वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
17: मैं भी ठीक हूँ। खाना हो गया?
18: हाँ जी हो गया। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
17: मैं पानीपत से बोल रही हूँ।
18: और आपका नाम?
17: जोया।
18: जोया जी, तो और बताइए कैसी हैं?
17: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए?
18: मैं भी बढ़िया हूँ।
17: घर में सब कोई ठीक है?
18: जी जी सब कोई बढ़िया है। और आपके घर में?
17: मेरे घर में भी सब कोई ठीक है। मेरे घर में तो मैं एक मेरा लड़का है।
18: अच्छा जी, तो आपके बाबू छोटे वाले कैसे हैं?
17: ओ ठीक है। अच्छा, आप मोनर्मा मैम बोल रही है ना?
18: जी।
17: ओ मैडम, मेरा गाना नहीं सुनी।
18: ओहो, गाना तो आपका बज गया होगा।
17: हाँ
18: जी, तो क्या आपको टाइमिंग नहीं पता कितना बजे?
17: नहीं पता है। और एक बात बोलूं, मैं मैसेज वाला भी कल देखी और सुनी।
18: अच्छा, तो मैसेज वाला आप जब मैसेज डालती हैं उसी टाइम आपका गाना बज जाएगा, और जो इसमें बात कर रही है ना,
17: हाँ,
18: तो इसमें रिकॉर्डिंग होता है और ये गाना आपका अगले दिन चल चलता है।
17: ओ, तो मैं वो मैसेज वाला नंबर नहीं लिख पाई।
18: अच्छा जी, तो रेडियो पे बताया जाता है नंबर, आप नोट कर लीजिएगा।
17: हाँ, एक तो नंबर नोट कर ली, वो जो 77-72 वाला है जो।
18: जी जी।
17: हाँ, तो उसमें कॉल लगा रही थी लेकिन कॉल नहीं उठा, तो फिर छोड़ दी मैं, रोने लगा बाबू तो।
18: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
17: आज गाना सुनेंगे जो नहीं है, दैया दैया दैया रे।
18: जी जी,
17: वही वाला।
18: ओके, और
17: मैडम एक बात बोलूं मैम?
18: जी बोलिए।
17: मसाला आपको नजर ना लगे, मैंने सच में, आप लोग दोनों, आप दोनों बहन है क्या?
18: नहीं।
17: आप दोनों का आवाज इतना मस्त लगता है और सेम टू सेम एक ही जैसा है।
18: अच्छा जी।
17: हाँ, असल में मैं बोल रही थी कि अल्लाह करे कि नजर न लगे, मैंने दोनों मैम का इतना मस्त आवाज है ना कि क्या नहीं कहने का, बहुत प्यारा आवाज लगता है। और मेरे को, आप किसी से भी बातें करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बातें बहुत ज्यादा सुनती हूँ।
18: जी जी, और आप कॉल करती है ना तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बोलती है ना जी कि पानीपत से बोल रही हूँ, समझ जाती हूँ कि आप जया जी बोल रही है। मैं भी आपको पहचान गई हूँ, आप बात होते रहेंगी।
17: हाँ ठीक है मैम।
18: जी, और आपका कॉल मैं बता दूं कि आज भी बच सकता है, क्योंकि पिछले बार जो कॉल आप रिकॉर्ड कराई थी ना।
17: हाँ,
18: वो कॉल मेरे पास है, तो आज चलेगा शाम से 5-7 के बीच।
17: ओ, तो ठीक है, मैं आज सुन लूंगी लग रहा है।
18: जी जी बिल्कुल। चलिए तो फिर प्ले करते हैं ना आपका।
17: थैंक यू मैम।
18: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
17: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: राम राम जाओ गुना जिला।
1: जी जी, नाम बता दिया अपन।
0: गाना सुनना भाई।
1: जी बता दी।
0: नदिया के पास चला रहे बटर हुआ कौन दिशा में।
1: जी जी, और गाना क्या क्या सुनाया की भी चाहता नहीं
0: सबको सुना जाओ। मैं तो हिंदुस्तान गाना।
1: अच्छा जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: गुना से बोल रहे हैं भाई।
1: और आपका नाम?
0: राम राम ना हमारो।
1: अच्छा जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में

0: बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर।
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
7: हाँ जी, हाँ जी, योगेश जी आंगड़े दो में तरह 36।
6: जी योगेश जी कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है, अच्छे हैं।
6: तो क्या हो रहा था?
7: अभी तो घर में है, खेत पे आया हूँ।
6: अच्छा जी, तो योगेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
7: मैंने तरह 36। गाना सुना देंगे फिल्म हिमालय की गोद से चांद से महबूबा हो मेरी तुम।
6: जी एक बार और बता दीजिए।
7: फिल्म है, गाने का बोल है चांद से महबूबा हो मेरी तुम, और फिल्म का नाम हिमालय की गोद में।
6: तो योगेश जी ये गाना आप मुझे गा के बताइएगा।
7: कोशिश कर सकते हैं एक दो लाइन।
6: दो लाइन ही गाना आपको।
7: फिल्म का नाम तो सुन लिया ना?
6: जी जी।
7: हाँ तो गीत के जो बोल है, चांद सी महबूबा हो मेरी तुम, ऐसा मैंने सोचा ना था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा ना था।
6: जी जी, और गाना भी करिएगा।
7: श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, ध्रुव पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है, और सब
6: साथी। तो चलिए फिर आपके गाना हम प्ले करते हैं।
7: धन्यवाद।
6: चलिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
8: चांद

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी।
1: जी नमस्ते।
0: क्या हाल चाल बेटे?
1: जी हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताए रहो कैसे बानी?
0: बढ़िया बानी हम, विकास कुमार।
1: जी विकास जी,
0: पिंतापुर से।
1: जी जी, तो क्या होता थे?
0: क्या होता थे, रोजा से टाइम निकाल करके बस रोजा लगा फोन धरा होता रही है कंपनी में है नो।
1: तो हमको पता था की रोजा ड्यूटी में होके।
0: सब और सब बताए?
1: जी सब बढ़िया बारह दुआ से।
0: अच्छा कैसा बानी?
1: जी हम ठीक बानी एकदम।
0: अच्छा मस्त बानी एकदम ना?
1: बिल्कुल
0: सही सही बात है, माता रानी के कृपा से सही रहे एकदम।
1: रउआ बताएं कि रउआ कैसन बानी?
0: मनी के बढ़िया बानी सन जी, बस काम उम चलता था बढ़िया बात है एकदम।
1: चलिए तो फिर कौन सा गाना सुने?
0: आज गाना सुनन हम अनुराधा पटवाल का छठ के गाना। गाना
1: कौन सा बता दे?
0: गाना गाना कौनो बजा दे हम अनुराधा पटवाल के।
1: अच्छा कभी गाना कैसे सुनवाएगी भी चाहता नहीं?
0: सबसे पहले आपके
1: थैंक यू,
0: आपके आपके घर में मैंने आपके मम्मी पापा जो भी मैंने सुनने वाले हुई है चाहे जितना रेडी रेडियम सुनने वाले हैं सबको।
1: अच्छा
0: हाँ, अपने मम्मी पापा के भी।
1: जी जी, तो चलिए फिर लव गाना हम प्ले करता नहीं?
0: अच्छा ठीक बटे ओके। नमस्ते
1: नमस्ते, सुना सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
1: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494111 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
2: एपिसोड 57 57

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि की भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था, फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
7: एपिसोड नंबर 58, 58।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99 27-9-82।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-7-14-86-165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सासाराम और औरंगाबाद को अगले वर्ष मार्च महीने तक सोन नदी का पानी पेयजल के रूप में मिलने लगेगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का कल आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 164 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की, अक्षरा गुप्ता को सौंपी गई टीम की कप्तानी। अब समाचार विस्तार से। सासाराम और औरंगाबाद को अगले वर्ष मार्च महीने तक सोन नदी का पानी पेयजल के रूप में मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज रोहतास के जमुहार में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोन नदी जल बंटवारे के बाद इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।
1: आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3/4 हिस्सा सोन नदी का पानी बिहार को मिल गया। आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम यहाँ डैम बनाएंगे, रिजर्वायर बनाएंगे, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, उस पानी का उपयोग करेंगे। पानी पीने के लिए भी आपको स्वस्थ करता हूँ, अगले मार्च के पहले औरंगाबाद शहर और सासाराम शहर को पानी भी पहुँचाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
0: वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा के तहत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प से जुड़कर बिहार के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: अभियान चलाना है, बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना है, और बिहार तभी समृद्ध होगा जब बिहार बिहारी जो है बिहार के अंदर रहेंगे। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने जो बिहार का नींव रखा है, सासाराम की पावन धरती से जरूर कहूंगा कि इस कदम को तेज गति से बढ़ाना है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने करूप स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 3 दिवसीय सेवा सेतु अभियान की शुरुआत की और सहयोग शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सासाराम में 122 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बेदा मोकर बाईपास का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कायाकल्प योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए पोखरे का निरीक्षण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने करूप पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 550 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 176 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से चंदन कुमार।
0: प्रदेश में सेवा सेतु शिविर सरकार आपके द्वार अभियान आज से शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इन शिविरों का आयोजन विभिन्न पंचायतों और प्रखंडों में किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना है। शिविरों में राशन कार्ड, आधार सुधार, राजस्व मामलों और विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े आवेदन मौके पर लिए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का अंतिम निपटारा 26 अक्टूबर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान के तहत कल विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पटना में मिलर हाई स्कूल मैदान में कल सुबह 9:30 बजे संकल्प सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। सभा के बाद सेवा ज्योति चौक से तारामंडल, गांधी मैदान, इस्कॉन टेम्पल और आर ब्लॉक होते हुए यात्रा निकाली जाएगी। राज्य के अन्य जिलों में भी यात्राओं और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। बक्सर में किला मैदान से गोलंबर तक मशाल और बाइक यात्रा निकलेगी, जबकि सिवान में अंबेडकर पार्क से बबुनिया मोड़ तक यात्रा प्रस्तावित है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जन भागीदारी बढ़ाना, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज बात उस संवाद की, जहां हर महीने देश की कोई छोटी सी कहानी पूरे देश की कहानी बन जाती है। नाम है मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।
5: हर महीने की एक तारीख तय है, रेडियो खुलता है और देश सुनने लगता है। कभी किसी छोटे से गांव का कोई व्यक्ति अपनी पहल से बदलाव ला रहा होता है, कभी कोई समूह स्वच्छता की मिसाल पेश कर रहा होता है, तो कभी कोई किसान या युवा अपने काम से नई राह बना रहा होता है। इन कहानियों को देश तक पहुंचाने का एक माध्यम बना मन की बात। अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ ये मासिक रेडियो कार्यक्रम आज भी हर महीने देशवासियों से संवाद का सिलसिला जारी रखे हुए है। ये संवाद सिर्फ नीतियों या योजनाओं की बात नहीं करता, बल्कि उन लोगों की भी बात करता है जो अपने स्तर पर कुछ अच्छा कर रहे हैं, और शायद यही रेडियो की ताकत भी है। क्योंकि जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित हो, जहां संवाद के दूसरे साधन आसानी से ना पहुंच पाए, वहां रेडियो अपनी आवाज लेकर पहुंचता है।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं।
5: पटना के नौबतपुर में रहने वाले अजय कुमार शर्मा भी इस आवाज से जुड़े हैं। वो नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं। उनके लिए ये देश के कोने कोने की कहानियों से जुड़ने का एक माध्यम है।
6: मैं अक्सर प्रधानमंत्री जी का मन की बात हर रविवार को 11 बजे से सुनता हूँ और बहुत मैं प्रभावित हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना सुंदर कार्य विकास गाँव में जो हो रहा है, इसमें बहुत से छोटे छोटे लोग परिवार होते हैं और बहुत उनके योजनाओं से बहुत प्रभावित है।
5: 12 साल पहले रेडियो पर शुरू हुई एक बातचीत आज भी हर महीने जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू की हुई ये पहल आज देश के कोने कोने की आवाज और अच्छी कहानियों को देश तक पहुंचाने का सिलसिला बन गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज बक्सर में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों से उनके सपनों और देश के भविष्य पर बातचीत की। श्री राय ने कहा कि टुंगड़ाव में 1942 के शहीदों की याद में CSR फंड से तोरण द्वार और शहीद भवन बनाया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 164 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 98 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 66 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। एक रिपोर्ट।
1: सबसे अधिक 40 उम्मीदवार दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, वहीं सबसे कम 11 उम्मीदवार तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पटना स्नातक से 22, तिरहुत स्नातक से 20 और कोसी स्नातक से 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 22, सारण शिक्षक से 19 और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि आज पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज की दिव्या ज्योति और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद की रश्मि विनायक गौतम ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा और 27 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। श्री नवीन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं तथा एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक कर विधान परिषद चुनाव की रणनीति और संगठन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीटों के लिए उम्मीदवारों के बीच समन्वय और वोटों के समीकरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। बिहार के मखाने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक और कदम बढ़ाया है। पूर्णिया से 1 मीट्रिक टन फूल मखाने की खेप ग्रीस के लिए रवाना की गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने इस निर्यात में मदद की है। पूर्णिया के बेलूरी से मंगाई गई मखाने की यह खेप मुंद्रा बंदरगाह से ग्रीस के पिराएउस पोर्ट पहुंची। निर्यात से घरेलू बाजार की तुलना में बेहतर कीमत मिलने से मखाना उत्पादकों की आय बढ़ने की संभावना है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बिहार अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। अक्षरा गुप्ता को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। टीम में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है। बिहार की टीम 9 अक्टूबर से मुंबई में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेगी। प्रदेश से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। मॉनसून की वापसी रेखा अभी सुपौल से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में सबसे अधिक 65.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।
2: दिनांक 7 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय वाणिज्य कर कार्यालय के 2 कर्मियों को 25,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मियों में असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश चंद्र मोहन और डेटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार झा शामिल हैं। दोनों एक व्यापारी से रिश्वत ले रहे थे। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 25 लाख रूपये मूल्य की 12,000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 261 लीटर नेपाली शराब बरामद की है। सारण जिले के सहाजितपुर के पिपरा गांव में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। शिवहर जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सासाराम और औरंगाबाद को अगले वर्ष मार्च महीने तक सोन नदी का पानी पेयजल के रूप में मिलने लगेगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का कल आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 164 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की। अक्षरा गुप्ता को सौंपी गई टीम की कप्तानी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:47 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां

0: हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट।

0: जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
8: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
8: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
8: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
9: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी। संतोष फर्नीचर डॉक्टर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6252

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे मुन्नी, तुम आ गई। चल मेरे कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।

0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रेस परिषद को आवश्यकता है सहायक अनुभाग अधिकारी की। एक पद ओबीसी श्रेणी के लिए तथा दो पद अनारक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.presscouncil.nic.in। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी का पद भरा जाना है। वेतन, भत्ते, अन्य शर्तें समय समय पर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ही रहेंगे। इच्छुक और पात्र अधिकारी काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट जे में इस पद के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट dor.gov.in/vacancies। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वरिष्ठ सुपरिंटेंडेंट, काउंसलर, कनिष्ठ इंजीनियर, नर्सिंग सहायक, कनिष्ठ ऑफिस सहायक, कनिष्ठ सहायक एमएस और परिचारक। कनिष्ठ ऑफिस सहायक के दो पद तथा कनिष्ठ सहायक के 10 पद उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी पदों पर एक एक रिक्ति ही उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में फोरमैन इलेक्ट्रिकल का एक पद रिक्त है। इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम और शर्तों, आवश्यक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देखिए 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 प्रशासनिक अधिकारी सह लेखाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पात्रता की शर्तों, सेवा की शर्तों, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि का विवरण राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है www.nin.pune.ayush.gov.in। क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय आमंत्रित कर रहा है अपर श्रेणी लिपिक के पद के लिए आवेदन। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान और अन्य आवश्यक शर्तों और निर्देशों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट rdsdetelangana.dgt.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रो रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चम रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
12: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
11: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
12: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
11: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
12: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
11: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप।
13: मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनों की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
14: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक

0: एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
0: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा

0: सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हाल्जेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
7: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
6: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
7: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
6: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
7: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
6: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710 30 9 92 या 90 65 65 7 50।
14: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में लगी आग, बाइक भी जलकर हो गई राख। भोपतपुर में अज्ञात चोरों ने 50 लाख के संपत्ति की कर ली चोरी, पुलिस जांच में जुटी। चेतना सत्र में छात्रों को किया गया सम्मानित और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद तथा EVM और वेयर हाउस का हुआ निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हाल चाल विस्तार से। मंगलवार की सुबह माझा थाना क्षेत्र के लंगटू हत्ता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में रखी मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना वकील मियां के झोपड़ी में हुई, जहां सुबह अचानक शुरू हुई बारिश के बाद बिजली गड़गड़ाने लगी और देखते ही देखते आकाशीय बिजली इनके झोपड़ी पर गिर गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गया और झोपड़ी में आग लग गई। पूरी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग को बुझाया, लेकिन तब तक झोपड़ी और मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में रखे अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गए हैं। यह परिवार पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। घटना के बाद से अब पीड़ित परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं आग लगने की घटना के बाद से परिवार को काफी नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देते हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित सरकारी सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोपतिपुर गांव के रहने वाले सुनील चौबे के घर में सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित कीमती कपड़े और नगदी समेत लगभग 50 लाख रुपए के संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। जानकारी मिलने के बाद परिवार घर पर पहुंचा, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को दोपहर 1 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त परिवार गोरखपुर में किसी का इलाज कराने के सिलसिले में गया हुआ था। घर खाली था और दोपहर में ही लोगों का कहना है कि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि यह घटना कब कैसे हुई है इसको लेकर कुचायकोट थाना की पुलिस आवश्यक अनुसंधान कर रही है। हथुआ प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय बरी ईसर सह मध्य विद्यालय रेपुरा के परिसर में चेतना सत्र के दौरान अनुशासन, बेहतर उपस्थिति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षक रंजय कुमार पांडे ने अक्टूबर माह में भी चयनित छात्र छात्राओं के बीच हॉर्लिक्स का वितरण किया। इस पहल से हर माह बेहतर प्रदर्शन और अनुशासन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय बनाने पर जोर भी दी जा रही है। कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय बरीसर के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार तिवारी और मध्य विद्यालय रेपुरा के प्रधानाध्यापक केशव राम ने कहा कि विद्यार्थियों को इस तरह सम्मानित करने से उनका मनोबल बढ़ता है और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ती है। इस दौरान दोनों विद्यालयों को जिले में आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनते हुए निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिले के कोने कोने से आए फरियादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक रखा और लिखित रूप में भी आवेदन दिया, जिनको सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों को आश्वस्त किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस गोपालगंज का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। सभी निर्वाचित मानकों के अनुरूप व्यवस्था का जायजा लिया गया और निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस की सुरक्षा, सीलिंग व्यवस्था एवं अन्य प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि सभी जांचों में स्थिति संतोषजनक पाई गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने पहाड़पुर सर्विस रोड पर छापेमारी करते हुए कुचायकोट क्षेत्र से 28 लीटर से अधिक देशी शराब को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में अर्जुन कुमार कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है। यह कुचायकोट के पकड़ी गांव का रहने वाला और विश्वनाथ कुशवाहा का पुत्र बताया जा रहा है। इसकी एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट के कुर्म टोला जलालपुर रोड में भी वाहन जांच करते हुए 10 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी एसपी कुमार बताया जा रहा है, जो विशंभरपुर थाना क्षेत्र के टोला सिपाया के दरोगा मुसहर का पुत्र है। इसकी भी मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा रात्रि कालीन रेल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, थावे एवं मीरगंज तक नियमित रात्रि बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य रात्रि के समय ट्रेन से गोपालगंज रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि यात्रियों को अनावश्यक रूप से पैदल अथवा सुरक्षित साधनों से आवागमन न करना पड़े। यह सुविधा गोपालगंज पुलिस के द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने 30 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मठिया के पास कार्रवाई करते हुए अजय कुमार शाह को शराब के साथ पकड़ा। इसके दुकान से पुलिस ने शराब को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 30 लीटर शराब बरामद की गई और इसके बाद अजय कुमार शाह पिता रामचंद्र शाह साकिन रघुनाथपुर थाना भोरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब को जब्त करते हुए अब इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इधर जिला मुख्यालय पर जनता दल यूनाइटेड द्वारा आशीर्वाद वाटिका मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम नीतीश संवाद जीविका के 20 साल बेमिसाल के ऐतिहासिक सफलता पर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल के आवास पर जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने पुष्प माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता में पार्टी के सभी पदाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग रहा है, विशेषकर महिला प्रकोष्ठ एवं जीविका दीदियों का सहयोग रहा। रहा है। जिला अध्यक्ष ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विकास मंत्री सुनील कुमार, विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रीता देवी, नगर परिषद के चेयरमैन हरेंद्र कुमार चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी के योगदान की सराहना की। इस दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष को बधाई देने वाले पदाधिकारियों में मुख्य रूप से जिला महासचिव अखिलेश प्रसाद, जिला महासचिव संजय कुमार, जिला महासचिव विजेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता अभय पांडे, जिला सचिव दशरथ सिंह, बरौली नगर अध्यक्ष दिनेश प्रसाद पटेल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार खान, बैकुंठपुर के प्रखंड अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिला सचिव संतोष कुमार दास, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय सहित दर्जनों पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम की सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं दी।
15: भोरे थाना की पुलिस ने 368 ग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र के नंदपट्टी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए घूम रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। सदर SDM डॉक्टर प्रेरणा सिंह के नेतृत्व में नगर थाना में दुर्गा पूजा पंडालों के अनुज्ञप्ति धारियों के साथ पुलिस की बैठक हुई। सभी पंडालों में CCTV और अग्निशमन यंत्र लगाने को निर्देशित किया गया। पंडाल में अलग एंट्री एग्जिट के साथ इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए। हाई टेंशन वायर से पर्याप्त दूरी और ढीले ढाले विद्युत तार नहीं रखने की हिदायत दिए गए। मुख्य मार्ग पर भंडारा लगाने पर रोक है। पंडाल के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। संकीर्ण रास्तों में पंडाल लगाने पर अग्निशमन वाहनों का रास्ता बाधित नहीं करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही शाम 6 बजे से रात 12-1 बजे तक टाउन क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण की तैयारी भी की गई है। इधर महावीरी अखाड़ा, दुर्गा पूजा और दशहरा इत्यादि को लेकर प्रशासन अलर्ट है। DMSP ने शांति समिति की बैठक कर सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाढ़ का पानी घटने के बाद संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। प्रभावित गांवों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता टीम की लगातार तैनाती की गई है। जल जनित और संक्रमण संबंधित बीमारियों से बचाव को लेकर लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षित पेयजल के इस्तेमाल और बीमारी के लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील भी की जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलबनवा गांव के पास बस का इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला जब बस पहुंची तो उसमें चढ़ने के दौरान अचानक बस से नीचे गिर गई, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच कर रही है। मृत महिला कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोंडवलिया गांव के वाहिद मियां की 70 वर्षीय पत्नी कलमा खातून बताई जा रही है। ट्रैक्टर पर सवार एक किशोर अचानक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के चक्के के चपेट में आ गया, जिससे किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मामला जादोपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक भी जादोपुर के मसान थाना गांव के सुकट शाह का 16 वर्षीय पुत्र अमन प्रीत बताया जा रहा है। यह मंगलपुर पुल के पास ट्रैक्टर से जा रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है।
14: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में लगी आग, बाइक भी जलकर हो गई राख। भोपतपुर में अज्ञात चोरों ने 50 लाख के संपत्ति की कर ली चोरी, पुलिस जांच में जुटी। चेतना सत्र में छात्रों को किया गया सम्मानित और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद तथा EVM और वेयर हाउस का हुआ निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है?
7: उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है?
13: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
13: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
13: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
16: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
17: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
20: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
21: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
20: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
22: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
23: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
24: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
25: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
26: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
27: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
28: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके और ऐसा ना हो कि आप गाने के फरमाइश तो करें लेकिन नए गाने की वजह से आपकी फरमाइश को नहीं सुनाया जा सके। तो आप लोग क्लियर, हम आप सभी से बताते हैं, हर रोज़ विनती करते हैं कि आप पुराने गाने के फरमाइश के साथ जुड़े, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। और हाँ, आप जल्दी गाने सुनना चाहते हैं तो एक ट्रिक बताता हूँ, एक बार में पूरे बातें टाइप करके सेंड करें हमारे नंबर पे और अपना मैसेज वैसे ही छोड़ दें। मैसेज छोड़ते हैं तो आपकी नंबर बहुत जल्दी आएगी। अगर बार बार आप मैसेज करेंगे तो आपकी नंबर में थोड़ी सी देरी हो सकती है क्योंकि हम जैसे जैसे मैसेज पहुंचे हुए रहते हैं वैसे वैसे गाने के फरमाइश को प्ले करने की कोशिश करते हैं। आप इधर उधर करेंगे तो आपकी बारी थोड़ी देरी से आ सकती है। तो यदि गाने सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनना चाहते हैं तो एक बार में पूरे मैसेज में अपनी विचार रखें और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे सेंड करें और अपने को स्थिर रखें। आपकी फरमाइश हम बिल्कुल पूरी करेंगे। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका इश्क बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए, सुनाना है आपको सगीर जी को और रोशनी जी, वीरेंद्र भैया, निशा जी और उमा शंकर जी, समीर भाई को और सभी दोस्तों को सुना दीजिएगा। बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज की जाएगी। और आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं, हेलो सोनू भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से, मुझे एक गाना सुना दीजिए, फिल्म एक दूजे के लिए, गाने का बोल है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बुलेट चौधरी जी बढ़िया थाना क्षेत्र 3 फेड़िया से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, मैं भी आपके शो से जुड़ गई हूँ और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिए, मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है तुम्हें देखने को तरसती हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अगर मैसेज आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि पुराने गाने के फरमाइश के साथ जुड़ना है। ये बातें हम आप सभी के बीच हर रोज़ हर बार हर दिन में मैं बताता हूँ, तो आप लोग ये इस पे ध्यान दें और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें। फिलहाल दिलीप जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो MZM 94.4 FM पे दिलीप जी की फरमाइश।

नेट पर 4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, ये सारी बातें टाइप करना है और हमारे नंबर पर भेजना है। जैसे आपकी मैसेज हमारे पास पहुँचेगी वैसे आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम बता दें पूरी करेंगे नौशाद जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज देख लिया जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर जी मुझे भी सॉन्ग सुनना है, ईसु फ्रॉम झिरवा से जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और कौन सा सॉन्ग सुनना है ये भी तो बताएं, तभी तो आपकी फरमाइश हम सुना पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, लेकिन आगे कुछ अता पता नहीं है तो आप अपना परिचय दें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और हम भी SMS फरमाइश में जुड़ चुके हैं और हमें भी गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रात की खामोशी में जब रेडियो की आवाज़ आती है, सोनू सर के शो में दोस्ती की महफिल सज जाती है, SMS फरमाइश का ये अंदाज बड़ा प्यारा लगता है, हर रोज हर दोस्त का नाम सुनकर दिल को सहारा मिलता है, ना कोई मतलब ना कोई हिसाब, बस दोस्ती का प्यार रहे, रेडियो रिमझिम की महफिल यूं ही हर रात गुलजार रहे, सोनू सर की आवाज़ और दोस्तों का साथ यही तो बनाता है हर रात को खास, दुआ है ये दोस्ती यूं ही मुस्कुराती रहे, रेडियो रिमझिम की महफिल हर दिल को खुशियां सुनाती रहे। काफ़ी प्यारी लाइन। और राघव जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं भैया, गाना का बोल है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। फरीदा बंगरा से जुड़ी है तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर क्या हाल है, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम भी नहीं लिखे हुए कि आप, ओ अलीशा महिरा गोपालगंज से जुड़ी हैं, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, आपकी वो फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि बिल्कुल वेरी नाइस सॉन्ग, दिल से थैंक्स भैया मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और जी बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। झिरवा से मैसेज करती हैं ईसु। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नौशाद जी के गाने प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो एम झिम 90.4 FM पे।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यदि आप भी इससे जुड़े हुए हैं तो बने रहें, एक एक करके फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू सुप प्यार में ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और मुझे एक गाना सुनना है प्रोफेसर फिल्म से गाने का बोले हमारे गांव कोई आएगा प्यार की डोर में बंध जाएगा। ये गाना मैं आपको तथा रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को सुनाना चाहता हूँ। यह फिल्म मैं 1962 में देखा था, इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। फिलहाल हम जो पहले से मैसेज किए हुए हैं श्रोतागढ़ और अपने गाने को लेकर इंतज़ार में बैठे हैं, उनके भी मैसेज हमारे पास पहुँचे तो उनकी फरमाइश प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बहुत अच्छा सोच चल रहा है और इस मैसेज को करते हैं। आलिशा माहिरा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भैया गाना सुनाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं तो हमें एक आज रोमांटिक सॉन्ग सुना दें। तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में फ्रॉम खखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से वीरेंद्र गुप्ता भैया जी जुड़े हुए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, मेरा नाम संदीप कुमार, घर खास परसौनी। तो बिल्कुल संदीप जी, आपकी मैसेज हमारे पास बहुत पहले पहुंची है तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, आप सब्र करें। आगे बढ़ते हैं, हम अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं बुलेट चौधरी जी की फरमाइश रेडियो रेमझिम 94.4 एफएम पे।

कभी प्यारा सॉन्ग सुनने हम सब रेडियो एमसीएम 9.4 एफएम पे। और आगे मिसेस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और हमारे पास देखे तो इस समय उतना ही है जितना हमें मिलता है हर रोज़। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश भी प्ले करेंगे। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश करती हैं रोशनी मानिकपुर से और गाने का बोल देती हैं, तू भी देखने को तरसती है ये आँखें। ओल्ड सॉन्ग है तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमशिम 90.4 एफएम पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रामचिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं हम सब ओल्ड इज गोल्ड। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि दिल से थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, चलिए आपको धन्यवाद है।

टेढ़े रमछम सुनने के लिए आगे मिसेज पहुंचा हुआ है। हाय, क्या हाल है? तो बिल्कुल बढ़िया मिसेज करती हैं निशा डुमड़िया से, और आगे मिसेज पहुंचे हुए हैं। अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस गाने की फरमाइश करते हैं मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने का बोल देते हैं हम अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछम 90.4 FM पे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0975-6575।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।

0: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछिम 90.4 FM पे। और आगे मैसेज पहुंचे हुए कई और आगे बढ़ते पहले गाने वाले मैसेज हम बता दें किनकी है और किनकी फरमाइश प्ले होगी। तो इस मैसेज को पहुंचाने वाले श्रोता आलिशा माहिरा गोपालगंज से हैं और आगे इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। खत में लिखूं पर तेरा पता मालूम नहीं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कुछ लिखा गया है कि बिल्कुल मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना प्यार करता है, ऐसे तो कितना भी यकीन दिलाओ तो झूठा ही लगता है। वैसे नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि ठीक बात है अपने साहिबा से अल्टीमेटिव प्यार करना, तो अनलिमिटेड प्यार करना चाहिए। अच्छा सॉन्ग, पर मेरा सॉन्ग बजा दे भाई, देखिए ये जनाब क्या कहते हैं। बिल्कुल आपकी वो फरमाइश हम प्ले करेंगे वीरेंद्र गुप्ता भैया जी, और थोड़ा सा सब्र कर ले। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा सॉन्ग कब प्ले होगा, तो बिल्कुल आपकी भी सॉन्ग प्ले होगा, थोड़ा सा सब्र कर ले। आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो रामछिम 90.4 FM पे।
1: सारे गामा कारवां

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे सुनने आप सब, और कुमार सानू लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, और 20 में से गाने की फरमाइश किया गया था जिसकी वजह से थोड़ी सी इधर उधर हो गई और दूसरे गाने प्ले हो गए थे। चलिए, आप लोग से हम हर रोज़ कहते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग मुख्य नाम बताएंगे ताकि हमें भी सहूलियत मिले आप सभी की फरमाइश को पूरा करने में। आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे ब्रिज बिहारी पांडे जी का, प्रोफेसर मूवी से गाने की फरमाइश किए हुए हैं और इनके फरमाइश को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सब, और स्पेशल एसएमएस फरमाइश का आगे मिसेज पहुंचाए हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया जी के कुरियर एक्सल नेपाल बॉर्डर से। तो चलिए इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और गाने का बोल देते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, गुलाबी गुलाबी आँखों से पिला दे तो मैं पीने का नाम ना लो। तो चलिए प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमाल के शाम रेडियो MGM 90.4 FM पे शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज हैं लेकिन कई तो हम नहीं शामिल कर पाएंगे। अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और समय जो है समाप्ति से कुछ आगे निकल रहे हैं, तो अंतिम गाने हम प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है और कहा भी गया है कि मेरा संग नहीं प्ले होगा क्या, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं। निशू फ्रॉम झिरवा से मैसेज की हैं और गाने का बोल दी है, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने, हम सभी आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ और साथ ही साथ हमें दीजिए आप सब जाने की इजाज़त। सुनते रहें, इंजॉय करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
3: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि ये अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए कल यानी 7-10 बुधवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दे दें। कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे वंदना। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर साधना का समय होगा 6:15 पर। आप सुनेंगे रामचरितमानस। कल प्रातः 7:00 आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम पटना प्रभात।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैल ही ना सुधरी।

0: हाँ तो करो लोग किसानी, हम जाते नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, जा बात करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैली ना।

0: परेशानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

रे तोहरा नखरा जैसन फिल्म की रनिया के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा, बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा।

0: पकड़े गर्दनिया ये छोड़ के चरनवा के बाप तोरा छोड़ गई ले हमरे अंगनवा।
1: संग

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का. तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911. जी हाँ, 8029494911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश.
4: हेलो
5: जी, गुड मॉर्निंग.
4: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में.
5: जी भारती जी, क्या मनोरमा जी?
4: जी मैं मनोरमा
5: जी, साथ मास्टर ग्राम धनाव रोशन टेलर से.
4: जी कैसे

0: ठीक है, अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी हम भी बढ़िया हैं।
0: कई दिनों के बाद फोन कर रहा हूँ, इधर छोड़ दिए थे हम, कहा फोन कर रहे हैं। खाली विज्ञापन तो हम लोग सुन रहे हैं, और क्या सुन रहे हैं, थोड़ा सा सुन रहे हैं, खाली विज्ञापन सुन रहे हैं। और सब बताइए, कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: जी मौसम तो बता दो कि धूप निकला हुआ
0: है। जी हाँ, धूप तो हम लोग की तरफ भी बहुत निकल रहा है। दशहरा की तैयारी हो रहा है ना?
1: जी जी, अब तो दशहरा भी आने वाला है।
0: चलिए ठीक है, यार वो उसमें जुड़ा जाएगा 12 बजे से।
1: जी बिल्कुल।
0: मैडम जो गाना सुना दीजिए नगीना मूवी का।
1: जी, और गाने की बोल।
0: आज कल याद कुछ और

0: जी कुछ है।
1: और सबसे पहले आपको सुनना चाहता हूँ और भारती जी जी को भी और जितने रेडियो दिन भी मैं सभी श्रोताओं को, और हम लोग सुनेंगे रोशन ट्रेलर में धनाव से।
2: मैं बता दूँ आप बहुत ही अच्छा गाना गा लेते हैं।
1: अरे कभी हम लोग का यही काम है, दिन भर रेडियो सुनना है, सुनना है, क्या किया जाए, गुनगुनाना।
2: जी जी बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज बच जाएगा ना शाम में?
2: जी
1: ठीक है, तब पहला कॉल था ना मैडम?
2: जी जी पहला ही कॉल था
1: जी। चलिए इंतजार रहेगा, 12 बजे फिर मिलेंगे।
2: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी
2: चलिए सबके साथ रेडियो रिंग जिम 95.4 FM।

0: हेलो
1: जी मैडम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
1: जी बोलिए,
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: जी मैम, मेरा नाम अशोक सोंधिया है।
0: ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी?
1: मैं राजगढ़ से बोल रहा हूँ। राजगढ़? राजगढ़।
0: अच्छा, ये कहाँ पड़ता है?
1: जिला राजगढ़ पड़ता है मैडम।
0: अच्छा जी, तो और अपना नाम क्या बताया है?
1: अशोक सोंधिया।
0: अच्छा जी, तो क्या आप हेलो माई चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं?
1: जी मैम।
0: अच्छा जी, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंजन का कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा लगता है मैम, तभी तो लगाया ही।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: क्या तुम्हें पता है?
0: और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: जी मैम। हाँ मैडम, किसी को सुनाना भी चाहते हैं। हम भी सुनना।
0: अच्छा जी, तो
1: हमारे सुनील साहू जी हैं।
0: अच्छा जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: हाँ करो मैम
0: जी। रेडियो 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी आपका भी स्वागत है कॉल उठाने के लिए, बहुत देर लगा दी उठाने के लिए।
0: जी जी कॉल नंबर शो नहीं कर रहा था।
1: अच्छा अच्छा और आप कैसी हैं?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और
0: जी तो आप दिलीप जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी जी बोल रहा हूँ।
0: जी जी आप
1: इसलिए तो कहा कि रानी मुखर्जी भी देखते हैं कि आवाज पहचानती हूँ।
0: जी जी आपने मेरा इतना मतलब नाम रख दें कि आप देखने से सब कोई कह रहा है। जी
1: क्या करें, बस आप लोग से जुड़ाव बना हुआ है, हम लोग आज से नहीं कई साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। बस आप लोगों को आवाजें होती है और रेडियो लिसनर की प्यार मोहब्बत होती है, जो नींद खुलते ही क्या होता है कि आकर्षित करता है कि चलिए हम लोग जुड़ जाएं और सभी दोस्तों को भी सम्मिलित होकर उन लोगों को आवाजों को सुना जाए, अपनी भी आवाजें रखा जाए, जिसे बहुत आनंद मिलती है। आज हमारी ये फरमाइश थी, जानती है फरमाइश क्या है?
0: जी बता दीजिए।
1: आज ये फरमाइश है कि हमारे रानी मुखर्जी अपने मन पसंद से जो है हमारे लिए गाना अच्छा था भोजपुरी गाने को भी सुनाए और सभी दोस्तों को भी सुनाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बजाइएगा तो गलत बजाइएगा, इतना तो नहीं है कि आपको पसंद हमारे पसंद ना मिले तो ही तो हो ही नहीं सकता। जो भी गाना पसंद से अपने चलाइएगा तो हमको भी पसंद आएगा और लिखना तो लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं तो गाना फरमा सकता था लेकिन बस आज आपके ऊपर डाला हूँ।
0: अच्छा जी।
1: जी हाँ, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गाना चलाइएगा। आप जानते हैं कैसे गाना हम लोग सुनते हैं, उसी तरीके से चला सकिएगा आप।
0: कोशिश करेंगे। भारती जी भी हैं, काम कर रही हैं अपना।
1: तो आज मैं काफी दिनों से आपसे बात नहीं हो रही थी ना, आज देखते हैं हो सकता है कि रानी मुखर्जी जी से बात हो जाए।
0: आपने मेरा नाम
1: क्या करें, जिसकी आवाज भी उनकी जैसा सम्मिलित है और मेरे को लगता है कि रानी मुखर्जी जैसा आपका भी गेहुआ रंग होगा, इसलिए रखती है।
0: अच्छा जी।
1: उत्तेजना से इनकी जो बातें विचार है उसको जांच परख के चलना पड़ता है।
0: और भी लिसनर लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि दिनेश जी नाम रखे हैं रानी मुखर्जी, तो हम लोग भी बोलेंगे लोग
1: बोल। अच्छा ये बताइए, बोलने में ऐसी करने में कोई गलत तो कोई इंसान बोलता नहीं है, ये आपका जज्बातों के ऊपर आपकी आवाज़ें भी वजह से आपको रानी मुखर्जी नाम रखा गया है।
0: जी जी मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे आपने इतना मुझे प्यार दिया और आप लोग के सपोर्ट से मैं भी प्रोग्राम कर रही हूँ धीरे धीरे।
1: हो जाएगा, सब लोग देखिए सीख के नहीं आता है, सब यही तो सीखना पड़ता है। फिर कभी बात होगा और भी कोई लाइन में लगा होगा तो विचार कर रहे होंगे, तो फिर कभी बात होगी हमारी आपकी, तो आपको भी नमस्कार, गाँव को भी नमस्कार, तो आइए।
0: जी नमस्कार।
1: तो
0: जी जी तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
1: ओके धन्यवाद।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghinti bajti hai to kehte hain
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्ते।
7: जी नमस्ते,
6: क्या हाल समाचार?
7: जी सब ठीक बा, अपन बताएं।
6: बढ़िया बा,
7: वैसे नाम बता दिया अपन।
6: हम पचफला से भोला जी बोलते हैं।
7: जी जी, और सब बताएं, रहो ठीक बा? नहीं हूँ।
6: भारती जी बोलते नहीं
7: ना?
6: भारती जी बोलते की मनोरमा जी।
7: मनोरमा,
6: मनोरमा जी ढेर दिन पर भेंट भर बरबा से आज भारती जी से अधिकार से भेंट होला।
7: और बताएं, खाना ना बनी?
6: सब कुछ हो गई बा।
7: कौन सा गाना सुने?
6: गाना सुने साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल में करार है। फिल्मी
7: सही गाना जाके बता सकते?
6: गाना तो देखी, गाना तो गाओ तो नहीं, लेकिन गाना देखे अभी सुने की इच्छा करे, गाओ की इच्छा ना करे।
7: और गाना कैसे सुनाई के लिए चाहते?
6: सबको रेडियो रिमझिम के पूरा टीम सब।
7: चलिए तो फिर अब गाना हम प्ले करते नहीं?
6: जी कल बजे
7: चलिए तो फिर प्ले करते हैं। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: आपको धन्यवाद मैडम।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया है, ठंडे मौसम का जायका ले रहे हैं।
1: जी जी, तो उमा शंकर जी, क्या आप पहली बार हेलमेट स्टेशन कॉल किए हैं?
0: नहीं, मैं तो कई बार कॉल कर चुका हूँ।
1: चलिए, तो ऐसे लग रहा है मुझे आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: नहीं, आप कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं मनोरमा।
0: हाँ, तो आपसे मेरे ख्याल से एक बार पहले बात हुई होगी, क्योंकि मैं किसी का नाम पूछता ही नहीं हूँ। तो आपने इस ऑप्शन देखा कि मुझे नाम पूछना पड़ रहा है। हाँ, बातें कर लेता हूँ, फरमाइश कर लेता हूँ, अभी मैंने किसी से नाम पूछा ही नहीं आज तक।
1: कोई बात नहीं है। आज तो कौन सा गाना सुनिए? आज
0: हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता, और गाने का बोल भी यही है हरियाली और रास्ता।
1: क्या आप मुझे गा के बताइएगा?
0: अब गाना तो मैं भूल गया हूँ, बस ये चलते चलते मुझे ध्यान आया, हमने कहा इस गाने का फरमाइश करना है हरियाली और रास्ता बलोचिस्तान, और हमको तो गाना गाने आता ही नहीं है। हमने कभी इंटरेस्ट भी नहीं दिया गाना गाने में, और डेलिकेट रहे श्रोता है सभी लोगों को।
1: एक बार और गाने के बोल बता दीजिएगा तो बेहतर होगा।
0: हरियाली, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता, टाइटल सॉन्ग है।
1: चलिए, तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: जी जी, धन्यवाद।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो रेडियो रिमझिम।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जय भवानी।
4: जय भवानी।
5: कहीं अपन हाल चाल?
4: जी हमारा हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताइए रवा कैसन बानी?
5: ठीक बा भवानी, हमारे हाल चाल ठीक बा। रउे तो पूजा करी ले, रउे तो इबादत करी ले, तो हमरा के गाना सुने के बा। हम तो शास्त्रीय राग पर आधारित गाना सुनी ले, आज से ना बहुत दिन हो गई। तो हमरा सुने के बा शोभा गुट्टो के गावल, तो सूरजमुख ना जाइबे बिंदिया बिंदिया धूमिल हो जाबे। शोभा गुट्टो का गाया हुआ ये राग ये इस पर आधारित दादरा पर, राग दादरा है।
4: जी जी।
5: इस गाने को गाया है शोभा गुट्टो ने, सूरजमुख ना जाइबे बिंदिया धूमिल हो जाबे।
4: वैसे कहाँ से बोलता
5: है? हम बोलता नहीं देवता, ग्राम भलही से जामो बाजार जिला सीमांत।
4: अच्छा,
5: बद्री नारायण मुनि।
4: जी जी। तो रउआ का हेलो माय चॉइस में पहली बार कॉल कैले बानी?
5: ना तो 3-4 बार कर चुकनी, 4 बार।
4: अच्छा।
5: हम अपन गाना फरमाइश करी ले, यानी हम सुनी ना सुनी लोग सुनेला, फरमाइश कर दे लोग सुनी, हम सुनी ना सुनी कोनो बात नहीं थे।
4: जी जी, बहुत अच्छा लागेला रउआ फरमाइश करे नी। तो
5: हम तो ज्यादातर शास्त्रीय राग पर आधारित गाना सुनी ले, ज्यादातर लोक धुन पर आधारित भी गाना सुनी ले, जैसे राजस्थानी हुआ, बंगाली हुआ, पंजाबी हुआ, ये सब गाना जो लोग धुन पर आधारित गाना बा वो सुन ली।
4: ये अच्छा लगेगा गाना, लेकिन ये सब
5: सूरजमुख ना जाइबे बिंदिया धूमिल हो जाबे, ये शोभा गुट्टो का गाया हुआ गाना है। बहुत तरह का गाना है शोभा गुट्टो का गाया हुआ, जो सुर सम्राज्ञी है।
4: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाइएगा भी?
5: हम तो जितना लिसनर है, हमारे भाई बहन है, हमारे जितने रेडियो रिमझिम के श्रोता है, सबको मैं सुनवाऊंगा और मैं भी खुद सुनूंगा। और सबको ये गाना जो है ना शास्त्रीय राग पर आधारित, सबको गाना ये अच्छा नहीं लगता, जो उसको समझ रखता है, जो उसको ज्ञान है, जो उसको बुद्धि है शास्त्रीय रागों पर, उसी को समझ में आएगा।
4: जी जी। चलिए तो फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
5: ठीक है जी। कब सुनेंगे आप?
4: ये गाना आपका कल बजेगा।
5: ठीक है। शाम को 5 बजे?
4: जी जी, 5 से 7 के बीच।
5: ठीक है जी, धन्यवाद
4: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
5: जय भवानी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिंकी 94.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: जी ठीक है, आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
0: स्लो ही बोलते हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना। तो नंदनी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? आपको कौन सा गाना सुनिएगा? कौन सा?
0: मारे
1: मारे अखिया। ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगी? ओके नंदनी जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, pick it up.

0: Now pick your phone up.
1: Hello?
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello?
0: Now pick your phone up.
1: Hello?
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो रिंकिन 90.4 एफएम में।
5: नमस्ते मैम, कैसी हैं?
4: जी नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: मैं ठीक हूँ।
4: आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है।
5: मैं भी ठीक हूँ, आप क्या रही आवाज़?
4: जी जी आ रही है, अपना नाम बता दीजिए।
5: मेरा नाम तृप्ति है।
4: तृप्ति
5: जी?
4: तृप्ति जी कहाँ से बोल रही हैं?
5: गोपालगंज से।
4: अच्छा जी, तो तृप्ति जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?
5: चला चला निगाहों से दिल चला, जो भी मोती हमको सुना।
4: तो क्या ये आप मुझे गा के बता सकती हैं?

0: जी, गाना तो बहुत ही अच्छा गा लेती हैं आप।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। और ये गाना जो बताएंगे वो आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: मेरी सिस्टर स्टेडी है, सिंगल है, और बाकी जो रवि सिंह है उनसे भी को, और भारती मैम को।
0: ओके दीप्ति जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो 90.4 एफएम में। जी नाम बता दीजिए अपना।
0: पवन जी बोल रहे हैं।
1: और कहाँ से?
0: सुबह से।
1: तो कैसे हैं पवन जी?
0: ठीक है, अपना सुनाइए। आप भी ठीक है ना?
1: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो पवन जी, कौन सा गाना सुनिएगा?
0: उस लड़की से दिल आया है जिसने मुझे सताया है।
1: गाना तो काफी खूबसूरत है
0: जी।
1: क्या ये गाना आप मुझे गाके बताएंगे?
0: पूरा याद नहीं है।
1: कोई बात नहीं है, आप बस दो लाइन गाना है आपको।
0: जी, लड़की से दिल आया है जो जिसने मुझे सताया है। मेन बात है कि हम लोग गाना नहीं गाते हैं ना, इसीलिए।
1: चलिए चलिए, कोई बात नहीं है,
0: अगला बार याद करके जरूर सुनाएंगे आपको।
1: जी जी बिल्कुल, हम वेट करेंगे आपका।
0: जी जी।
1: और ये गाना जो बताया वो डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ, पूरा गोपालगंज जिला लोग आपको भी। दोस्त है, इरफान है, अर्जुन है, चंदन है, सुमंत है, बब्बी है।
1: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: जी हाँ, गोपाल मंदिर गेट के सामने।
1: अच्छा जी, चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
0: जी जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम मैम।
4: जी वालेकुम अस्सलाम।
5: जाकिर हुसैन, बिहार से।
4: जी जाकिर जी, कैसे हैं?
5: हम ठीक है मैम, अपना बताइए।
4: जी हम भी बढ़िया।
5: अरे मैम, थक गए थे, पूरा कॉल लगा लगा कर पूरा अभी थक गए हैं।
4: अच्छा जी।
5: बहुत ओवर से कॉल लगा रहे हैं।
4: बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना?
5: हाँ मैम, बहुत मेहनत करती है। सही बात है ना, मेहनत हमको अच्छा लगता है, इसी के चलते मेहनत करते हैं।
4: अच्छा जी, चलिए, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना
5: सुनना चाहते हैं।
4: जी बिल्कुल, बता दीजिए।
5: आए और अब्बा बिल जलता है, झूठे सबे पिलाते हैं, प्यार बात निभाने देखो प्यार के आते हैं।
4: जाकिर जी, गाना गा के बताइएगा मुझे।
5: थोड़ा बहुत याद है,
4: बोला ही नहीं जाइए।
5: आयो रब्बा, आयो रब्बा, बिल जलता है, झूठे

0: गाना सुनना चाहते हैं
1: जी जाकिर जी, और ये गाना आप डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ मैम, जो अपना दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: सबसे पहले आपको और रेडियो रिव्यू के जितना परिवार है उन लोगों को, और सुखी आलम, मेराज आलम, यूसुफ अली, मोहम्मद कूप, उसके बाद जितेश शर्मा, बस मुकेश शर्मा, रविंदर शर्मा, बस इन्हीं लोगों को सुनाना चाहते हैं।
1: जाकिर जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं जादवपुर से बोल रहे हैं, गोपालगंज।
1: गोपालगंज जादवपुर?
0: हाँ हाँ, गोपालगंज जादवपुर।
1: अच्छा, ये जाकिर जी तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ओके मैम।

0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: इसमें बोलते हैं पठानपति से।
0: जी जी, कैसन बानी?
1: ठीक बानी, अपन बताए।
0: हमरो ठीक बा, बड़ा ढेर दिन का मिलल बानी।
1: बहुत दिन से मिलल बानी, फोन करके टाइम नहीं मिलल, फोन कहाँ कर रहा हूँ।
0: अच्छा, इतना बिजी बानी?
1: आज भर पड़ रहा, अभी याद पड़ रहा, कहीं रेडियो चल रहा तब याद पड़ के फोन लगी तुम।
0: अच्छा, वो हम तो कहीं की हमनी से किसी आई बानी का की फोन होना की करत
1: तो बोला तो किसी आई बानी कहीं का है। दो दो अटवाद बीत गए, फोन था तो इन्होंने गाना बजाओ सुने गो फोन तो नहीं कर व्हाट्सएप से गाना भेजे नहीं कालो
0: नाश्ता पानी सब हो जाए। बताई की आज के क्या बार और फरमाइश
1: मसूरी गाना बाबा की मगई मगई चीर के पथल दिन डाल करे डॉक्टर से सत्य चीर के पथल दिन डाल
0: सरकार के बता सकते नहीं गाना
1: ना मैडम ये गाना नहीं थोड़ा अच्छा लग रहा था जी, ये बता दी।
0: अच्छा ठीक बा, पूरा कोशिश रही की रब गाना ये बाजी और सुनाए की विचार तो नहीं
1: और सुनाए रानी बोले बड़े रखो से जितना लोग सुनी था सब कोई सुनी।
0: अच्छा चली
1: ऐसे रहो तो बतिया के तो बोला आदमी तो बहुत ही अच्छा लगे ला एगो दोस्त की तो बात होला दिन बा।
0: जी जी, हमके भी बहुत ही अच्छा लगे रहो से बात करके।
1: सही बात, अगर रिकॉर्डिंग की बात न रही तभी हर बात तो बात कर लेगी।
0: सही कहा था नहीं,
1: रोगों से बात करो बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिलेगा।
0: चली तब
1: फोन लगाएंगे ठीक और रोगों से बात
0: वैसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगे। चलिए तो एक ही साथ गाना प्ले कर रही
1: हूँ।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90।

0: थैंक यू मैम। सलाम अलैकुम, क्या खैरियत है?
1: जी वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है? आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। खाना हो गया?
1: हाँ जी हो गया। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: मैं पानीपत से बोल रही हूँ।
1: और आपका नाम?
0: जोया।
1: जोया जी, तो और बताइए कैसी हैं?
0: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: घर में सब कोई ठीक है?
1: जी जी सब कोई बढ़िया है। और आपके घर में?
0: मेरे घर में भी सब कोई ठीक है। मेरे घर में तो मैं एक मेरा लड़का है।
1: अच्छा जी, तो आपके बाबू छोटे वाले कैसे हैं?
0: ओ ठीक है। अच्छा,
1: अच्छा
0: आप मोनरमा मैम बोल रही है ना?
1: जी।
0: ओ मैडम, मेरा गाना नहीं सुनी।
1: ओहो, गाना तो आपका बज गया होगा
0: हाँ
1: जी। तो क्या आपको टाइमिंग नहीं पता कि कितना बज रहा
0: नहीं
1: था?
0: नहीं पता है। और एक बात बोलूँ, मैं मैसेज वाला भी कल देखी और सुनी।
1: अच्छा, तो मैसेज वाला, आप जब मैसेज डालती हैं उसी टाइम आपका गाना बज जाएगा। और जो इसमें बात कर रही है ना,
0: हाँ
1: तो इसमें रिकॉर्डिंग होता है और ये गाना आपका अगले दिन चलता है।
0: ओ, तो मैं वो मैसेज वाला ना नंबर नहीं लिख पाई।
1: अच्छा जी, तो रेडियो पे बताया जाता है, नंबर आप नोट कर लीजिएगा।
0: हाँ,
1: जी
0: एक तो नंबर लोड कर ली, वो जो 77-72 वाला है जो।
1: जी
0: हाँ, तो उसमें कॉल लगा रही थी लेकिन कॉल नहीं उठा, तो फिर छोड़ दी मैं। रोने लगा बाबू तो।
1: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: आज गाना सुनेंगे जो नहीं है, दैया दैया दैया रे,
1: जी जी
0: वही वाला।
1: ओके। और गाना?
0: मैडम एक बात बोलूं मैम,
1: जी बोलिए।
0: मसाला आपको नजर ना लगे, मैंने सच में, आप लोग दोनों, आप दोनों बहन है क्या? आप
1: नहीं,
0: दोनों का आवाज इतना मस्त लगता है और सेम टू सेम एक ही जैसा है।
1: अच्छा जी,
0: हाँ, असल में मैं बोल रही थी कि अल्लाह करे कि नजर ना लगे, मैंने दोनों मैम का इतना मस्त आवाज है ना कि क्या नहीं कहने का। बहुत प्यारा आवाज लगता है। और मेरे को, आप किसी से भी बातें करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बातें बहुत ज्यादा सुनती हूँ।
1: जी। और आप कॉल करती है ना, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बोलती है ना जी कि पानीपत से बोल रही हूँ, तो मैं
0: हाँ
1: समझ जाती हूँ कि आप जोया जी बोल रही हैं।
0: हाँ
1: चलिए, मैं भी आपको पहचान गई हूँ, आप बात होती रहेंगी
0: हाँ ठीक है मैम।
1: जी। और आपका कॉल मैं बता दूं कि आज भी बज सकता है, क्योंकि पिछली बार जो कॉल आप रिकॉर्ड कराई थी ना,
0: हाँ
1: वो कॉल मेरे पास है, तो आज चलेगा चलेगा शाम से 5 से 7 के बीच।
0: ओ तो ठीक है, मैं आज सुन लूंगी लग रहा है।
1: जी जी बिल्कुल
0: थैंक
1: जी। चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: यू मैम।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: राम राम जाओ गुना चला।
1: जी जी, नाम बता दिया अपन।
0: गाना सुनना भाई।
1: जी बता दी।
0: नदिया के पास चला रे बटलिया कौन दिशा में।
1: जी जी, और गाना कैसे सुनाएगी की भी चाहता नहीं
0: सबको सुनान जाओ मैं तो हिंदुस्तान का गाना।
1: अच्छा जी है? जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: गुना से बोल रहे हैं भाई।
1: और आपका नाम?
0: राम नारायण हमारा।
1: अच्छा जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। हाँ जी
6: हाँ जी योगेश जी आंगड़े गुमे तरह छत्तीसगढ़ से।
5: जी योगेश जी कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है अच्छे हैं।
5: तो क्या हो रहा था?
6: अभी तो घर में है खेत से आया हूँ।
5: अच्छा जी तो योगेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: गुमे तरह छत्तीसगढ़।
5: ओके
6: गाना सुना देंगे फिल्म हिमालय की गोद से चांद से महबूबा हो मेरी तुम।
5: जी एक बार और बता दीजिए।
6: फिल्म है गाने का बोल है चांद से महबूबा हो मेरी तुम और फिल्म का नाम हिमालय की गोद में।
5: तो योगेश जी ये गाना आप मुझे गाके बताइएगा।
6: कोशिश कर सकते हैं एक दो लाइन।
5: दो लाइन ही गाना है तो।
6: फिल्म का नाम तो सुन लिया ना?
5: जी जी
6: हाँ। तो गीत के जो बोल है चांद सी महबूबा हो मेरी तुम ऐसा मैंने सोचा ना था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा ना था।
5: जी जी और गाना गीत भी करिएगा।
6: श्री पाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है और सब
5: साथी। तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
6: धन्यवाद
5: करिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते दीदी
1: जी। नमस्ते,
0: क्या हाल चाल बेटे?
1: जी हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताए रोवा कैसन बानी?
0: बढ़िया बानी हम, विकास कुमार
1: जी। विकास जी
0: पिंतापुर से
1: जी। जी तो क्या होता थे?
0: क्या होता थे रोजा से टाइम निकाल करके बस रोजा लगा फोन धरा होता रही कंपनी में है नो।
1: तो हमको पता था की रोवा ड्यूटी में होके।
0: सब और सब बताए?
1: जी सब बढ़िया बारह दुआ से।
0: अच्छा कैसन बानी रोजा?
1: जी हम ठीक बानी एकदम।
0: अच्छा मस्त बानी एकदम ना?
1: बिल्कुल
0: सही बटे, माता रानी के कृपा से सही रहे एकदम।
1: रउआ बताए की रउआ कैसन बानी?
0: मनियो के बढ़िया बानी समझी, बस काम उम चलता था बढ़िया बटे एकदम।
1: चली तो फिर कौन सा गाना सुने?
0: आज गाना सुने हम अनुराधा पटवाल का छठ के गाना। गाना सुन
1: कौन सा बता दे?
0: गाना गाना कौनो बजा दे हम अनुराधा पटवाल के।
1: अच्छा कभी कभी गाना के उसे सुनवाए के चाहता नहीं?
0: सबसे पहले आपके
1: थैंक यू।
0: आपके आपके घर में मैंने आपके मम्मी पापा जो भी मैंने सुनने वाले हुई है, चाहे जितना रेडी रेडी सुनने वाले हैं सबको।
1: अच्छा
0: अपने मम्मी पापा के भी?
1: जी जी। तो चलिए फिर गाना हम प्ले करता नहीं?
0: अच्छा ठीक बटे ओके। नमस्ते
1: नमस्ते। सुना तो सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494111 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हमार बजरंगी

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।